शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 12 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज सोमवार है।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण

0: जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान शिव जी की जटाओं से निकलकर इस धरा को पावन किया है मां गंगा ने। गंगा एक नदी नहीं, हमारा विश्वास है, भारत की पहचान है गंगा। नदी नहीं संसार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा।

करता करी न कर सके, शिव करे सो हुए। तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौटवाल और मन्ना डे के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:25 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार।
1: सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें ये अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए। भारत में राजनैतिक समानता की व्यवस्था तो हो गई है, किंतु

0: सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं शेष हैं। इस विसंगति को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाए, या फिर वे लोग जो सताए हुए हैं राजनैतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे। मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। ये एकत्व की भावना है, किसी वर्ग विशेष से संबंधित होना नहीं। सही राष्ट्रवाद है जाति भावना का परित्याग, और जाति भावना गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीयता का अर्थ होना चाहिए सामाजिक एकता की दृढ़ भावना। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसका आधार हो भाईचारा। ऐसा राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए जो दूसरे राष्ट्र या समुदाय के प्रति निर्दयता अथवा जिससे भय प्रमाणित हो। उस समय तक राष्ट्रवाद निरर्थक है जब तक राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान न हो। स्वस्थ समाज के बिना विकास की स्थिति की अनुभूति मानव को नहीं हो सकती है। समाज की संरचना समता की भूमि पर ही संभव है। समता तभी संभव है जबकि उस समाज के लोगों का दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण ना हो और वे एक दूसरे के सहायक सिद्ध हों। उनमें सदनागरिक के गुणों का संवर्धन निरंतर होता रहे। हर एक मनुष्य को एक जीवन दर्शन भी बनाना चाहिए जिसके द्वारा उसका मूल्यांकन हो सके। मूल्यांकन का स्तर हर मनुष्य को स्वयं ही तय करना चाहिए। उसमें नैतिक स्तर बरकरार रहना चाहिए जिसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का विकास होता है। वही नैतिकता है। व्यक्ति ही नहीं अपितु राष्ट्र तथा समाज के लिए भी ये उसके मूल्यांकन का मापदंड हो सकता है। कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं और कुछ भी सनातन नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन मानव और समाज का धर्म है। मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रह सकता, उसे मस्तिष्क भी मिला हुआ है जिसे विचारों की खुराक चाहिए। इस पृथ्वी की अच्छी चीजें स्वर्ग से नहीं आती। प्रत्येक प्रगति की कीमत होती है और जो इसका भुगतान करते हैं वही इसे प्राप्त करेंगे।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर व साथी। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर कुंदन सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है, खेती की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज सुबह 7:10 पर जानकारी दी जाएगी आंखों की एलर्जी पर। जानकारी देंगे डॉक्टर संजय सेन। लोक संगीत के कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। गायक कलाकार हैं डॉक्टर लाल सिंह राजपूत।

गीतकार भरत व्यास पर केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। विश्व जूनोसिस दिवस पर आधारित है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। प्रसारण समय दिन में 11:30।

दोपहर 1:15 पर घर संचार कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जूनॉटिक रोगों से सतर्कता है जरूरी। बात होगी लद्दाख के हेमिस उत्सव की। चटपटी रेसिपी व फैशन ब्यूटी के साथ सुनेगा दिव्यानी दुबे की वार्ता। शीर्षक है जीवों पर दया करना मानवता है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आनंद लीजिएगा। गीतों का गायक कलाकार हैं डॉक्टर मेधा सचदेवा। सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय है मानव वन्यजीव संघर्ष। नई पहल में बात होगी राष्ट्रीय एससी एसटी हब योजना की। इतिहास के पन्नों से बात होगी संथाल विद्रोह की। साथ ही सुनेगा प्रांजल टमटा की वार्ता। शीर्षक है वृक्षों की पर्यावरणीय भूमिका। शाम 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा होगी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। मंडी भाव मौसम की जानकारी व लोकगीतों के साथ सुनिएगा भेंटवार्ता। शीर्षक है जूनॉटिक रोग कारण लक्षण और बचाव।

मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा होगी प्लास्टिक से मुक्ति और जन सहयोग पर। सेहतनामा घरेलू नुस्खे ज्ञान सागर के साथ आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर सुनेगा अटल रहा डॉक्टर प्रभा माधुनी की वार्ता। शीर्षक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। फिल्मों से गजलों का कार्यक्रम नश्र किया जाएगा रात्रि 8:00 और रात्रि 10:00 सुनेगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। साथ ही रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। तो ये था हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर व साथियों की आवाजों में भी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुंदन सिंह की वार्ता। शीर्षक है, खेती की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं।
1: खेतों की उत्पादकता, खेत की भूमि की गुणवत्ता, उर्वरता, सिंचाई साधनों की स्थिति, कृषि निवेशों के प्रयोग एवं क्षेत्र विशेष में एक समय विशेष के अंदर ली जा रही फसलों एवं उनके शस्य क्रम पर निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर खेतों की उत्पादकता 4 प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उर्वरता में वृद्धि, खेती के लिए सिंचाई साधन एवं अन्य सुविधाओं का होना, क्षेत्रफल विशेष में एक निश्चित अवधि में फसलों का लिया जाना तथा शस्य क्रम

एवं फसल सघनता। कृषि निवेशों का संस्तुत मात्रा में समय अंतर्गत सही विधि से प्रयोग। भूमि की उर्वरता का तात्पर्य यह है कि उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का पूर्ण समावेश रहे, जैसे फसलों को उगाने के लिए मुख्य रूप से नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, मॉलिब्डेनम आदि की भी पौधों को बहुत ही सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की यदि भूमि में कमी है तो उसके लिए मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों के लिए नत्रजनित, फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की मात्रा संस्तुत की जाती है। इसी प्रकार से फसलों में अन्य तत्वों की कमी के लक्षण फसलों में परिलक्षित होने पर सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग की संस्तुति की जाती है, जैसे धान में खैरा रोग के लक्षण होने पर जिंक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग एवं फूल गोभी का फूल विकृत निकलने की स्थिति में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करें। भूमि में इन पोषक तत्वों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों द्वारा लगातार करते रहने से भूमि की मूल संरचना प्रभावित होती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में लगातार ह्रास होता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब भूमि में जल धारण क्षमता, तापक्रम संतुलन क्षमता तथा कार्बन नत्रजन अनुपात असंतुलित हो जाने से फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। साथ ही साथ नहरों के किनारे भूमि में जल स्तर ऊंचा होने के कारण तथा लवण के क्रम से ऊपरी सतह पर बने रहने से ऊसर भूमि हो जाने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अतः इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए किसानों को भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जहां एक ओर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ ही साथ हरी खाद एवं कंपोस्ट खाद तथा नील हरित शैवाल एवं अन्य जैव उर्वरकों का प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो गया है, वहीं जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था तथा नहरों के किनारे सीपेज एवं तत्फल स्वरूप ऊंचे जल स्तर की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक उपाय अपनाने होंगे, तभी फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग का पूर्ण लाभ उठाया जा सकेगा और भूमि की गुणवत्ता भी बरकरार रह सकेगी। यह तथ्य सर्वविदित है कि बारानी क्षेत्रों की अपेक्षा सिंचित क्षेत्रों में भी सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार धान में सिंचाई सुविधाओं के कारण प्रति हेक्टर अतिरिक्त लागत 1292.45 रुपये आती है और उससे ₹1907 का अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गेहूं में सिंचाई सुविधाओं में प्रति हेक्टर ₹967.50 अतिरिक्त लागत आती है, जबकि अतिरिक्त प्रतिफल ₹2837.70 आता है। इसी प्रकार से अनियमित वर्षा और सूखा की स्थिति में जहां एक ओर सिंचित क्षेत्रों में 15-20% उत्पादन में कमी आती है, वहीं असिंचित क्षेत्रों में 50% से 100% हानि की संभावना रहती है। जुताई एवं अन्य शस्य क्रियाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग सीधे खेतों की उत्पादकता पर प्रभाव डालता है, जैसे सीड कम फर्टी डिल से बुवाई तथा पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रुपाई निश्चित रूप से अधिक उत्पादन लेने में तो सहायक सिद्ध हुए ही है। साथ ही साथ खेती में मानव श्रम की बचत से प्रति इकाई उत्पादन लागत में भी कमी आई है, जिससे किसानों को शुद्ध लाभ बढ़ जाता है। सिंचाई जल को उठाने के लिए पंप सेट तथा जुताई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से फसलों को खरपतवार एवं कीटों तथा रोगों से फसलों को बचाने के लिए कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में कृषि रक्षा उपकरणों में बहुत ही लाभकारी भूमिका अदा की है। बहुफसली खेती का प्रचलन और सीमित जल से अधिक मितव्ययी एवं लाभकारी प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए स्प्रिंकलर सेट एवं टपक सिंचाई प्रणाली बहुत ही लाभकारी है। सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचन क्षमता के सृजन के फलस्वरूप एक वर्ष में एक से अधिक फसल लेनी होती है, इसलिए जब असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई साधनों का प्रयोग होने लगता है तो ज्वार और अरहर या बाजरा और

0: अरहर या अरहर और उड़द, अरहर और मूंग या परती, राई अथवा अन्य फसलें लेने के स्थान पर धान और तोरिया, तोरिया के बाद गेहूं और गेहूं के बाद मक्का जैसी चार फसली फसल चक्र अपनाए जाने चाहिए और प्रयास यह करना चाहिए कि जो भी फसल बोई जाए उसकी अधिक उपज देने वाली एवं कम समय में तैयार होने वाली बाजार ग्राही प्रजातियों की बुआई की जाए, जिससे जहां एक और वर्ष में 3 या 4 फसलें ली जा सकेंगी, वहीं प्रत्येक फसल से अच्छी उपज प्राप्त होगी और उसके उत्पाद बाजार में बहुत आसानी से बिक जाएंगे। किसान भाई जो भी फसल लें उसके लिए नत्रजनित, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। उर्वरकों के प्रयोग में यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बारानी क्षेत्रों तथा दलहनी फसलों में उर्वरकों की एक ही बार में बेसल ड्रेसिंग करनी होगी, जबकि सिंचित क्षेत्रों में नत्रजनित उर्वरकों की आधी मात्रा फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग बेसल ड्रेसिंग में करना होगा। नत्रजन की शेष मात्रा का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। इसी प्रकार से फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण परिलक्षित होने पर सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हेतु संस्तुत रसायनों का प्रयोग किसान भाई समय के अंतर्गत करें। इस तरह से खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हमने आरंभ में 4 बातें बताई थी, उन्हें हम पुनः किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 बातें बहुत ही आवश्यक हैं। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उर्वरता में वृद्धि, खेती के लिए सिंचाई साधन एवं अन्य सुविधाओं का होना, क्षेत्रफल विशेष में एक निश्चित अवधि में फसलों का लिया जाना तथा सस्य क्रम एवं फसल सघनता, कृषि निवेशों का संतुलित मात्रा में समय अंतर्गत सही विधि से प्रयोग। इस तरह से किसान भाई यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने खेतों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुंदन सिंह की वार्ता। शीर्षक था खेती की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का इंतजार कुछ पलों का।

0: ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिकद्विशत अन्नसंग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिह्नांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते, यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण,

शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी

0: महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. We have a report.
2: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the Trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited

0: audited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The nation pays homage to Bhartiya Janasangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture, in association with the West Bengal government, will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the two-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. Assam Cabinet has approved a series of major policy decisions aimed at strengthening emergency services, promoting industrial growth and improving governance ahead of the commencement of budget session of the State Assembly today. Briefing the media after the Cabinet meeting in Guwahati, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said the Cabinet approved several bills to be introduced during the ensuing Assembly session. The Cabinet also approved an integrated emergency response system under the 112 helpline with an outlay of 100 crore rupees. In Kerala, orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts, indicating the likelihood of isolated very heavy rainfall. Yellow alert has been issued for 6 other districts, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated very heavy rainfall is expected in the northern districts of Kerala tomorrow also. Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the 5-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat to Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर संजय सेन की वार्ता। शीर्षक है आंखों की एलर्जी।
3: आंखों की एलर्जी एक सामान्य सी लगने वाली परंतु बहुत गंभीर नेत्र रोग के रूप में जनमानस में देखी जाती है और इसमें ग्रसित जितने भी बच्चे या युवक या वृद्ध होते हैं उनके कुछ खास किस्म के लक्षण हमेशा मौजूद रहते हैं जिसमें आंखों का लाल रहना आंखों में थोड़ी सी सूजन रहना आंखों से पानी आना और आंख में विशेष किस्म की खुजली होना बार बार आंखों को मलने का मन करते रहना इस लक्षण से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनको आमतौर पे दवाइयां बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाती हैं और ये समझ में नहीं आ पाता कई बार कि ये बीमारी क्या है एलर्जी मुख्यतः हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों के अंदर होने वाली एलर्जी जिसको हम स्प्रिंग कटार के नाम से जानते हैं और ये काफी हद तक मौसम के बदलाव के समय पे पाई जाती है स्प्रिंग कटार का मतलब है बसंत ऋतु के आगमन से यानी कि स्प्रिंग सीजन से जबकि मौसम में जिस तरीके का बदलाव होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है या फूल उसके अंदर पैदा होते हैं खिलते हैं और इन फूलों के जो परागकण वातावरण में उड़ते हैं उससे बच्चों को कॉमनली सामान्यतः 3 वर्ष की उम्र से 18-19-20 साल की उम्र तक के बच्चों में ये पॉलन ग्रेन से परागकणों से एक खास किस्म की एलर्जी होती है यानी वो उसके संपर्क में आने से आंख एक विशेष किस्म से उसके अंदर एक रिएक्शन आती है उसमें एक परिवर्तन आता है और आंख आमतौर पर लाल रंग लगती है और आंख के काली पुतली के और सफेद हिस्से के बीच में बड़े बड़े या छोटे छोटे दाने बन जाते हैं उनको हम रोहे जैसी शिकायत के रूप में आम भाषा में बताते हैं और आंख आमतौर पर लाल रहने लगती है उससे पानी बहने लगता है और हर समय खुजली उसके अंदर होती रहती है इस बीमारी के साथ में जब इलाज शुरू होता है तो तुरंत फायदा होता है परंतु जैसे ही इलाज को बंद किया जाता है वैसे ही बीमारी दोबारा से आ जाती है कभी कभी

0: सीजन का ये बदलाव मात्र परागकणों के संपर्क में आने से नहीं होता, जब भी ऋतुओं में परिवर्तन होगा, जब भी गर्मी से बरसात की तरफ जाएं या बरसात से जाड़ों की तरफ जाएं या जाड़े से बसंत ऋतु की तरफ आएं, तो तब जब जब भी इस तरीके का एक परिवर्तन वातावरण के तापमान में होता है, तब उसमें इस तरीके की एलर्जी पैदा होती है और इसको विशेष रूप से इसमें रिएक्शन होती है, उसको स्प्लिंग कटार कहते हैं। जो दूसरी एलर्जी है वो धूल के कणों से होती है, जिसको हम कहते हैं हाउस डस्ट, यानी घर में भी लगने वाली झाड़ू की जो धूल निकलती है उससे भी बहुत कॉमनली एलर्जी पाई जाती है। तीसरी कुछ खाने पीने की वस्तुओं से हो सकती है, और चौथी जो है वो कुछ अंदरूनी आंतरिक हमारे सिस्टम की बीमारियों से कुछ एलर्जी होती हैं, जिनको हम इंटरनल एलर्जिक डिसीजेस कहते हैं। इनके अंदर आंख में केवल खुजली या पानी आने की शिकायत या लाल रहने की शिकायत नहीं होती, इसके अंदर कभी कभी आंख के पर्दे में सूजन की शिकायत होती है, जिसको हम आयराइटिस नाम की बीमारी से जानते हैं, और ये काफी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जिसके अंदर आंख की रोशनी के कम होने का खतरा रहता है, आंख में काले पानी आने का खतरा रहता है, या कभी कभी आंख में मोतियाबिंद के बनने का भी खतरा उसमें हो जाता है। तो जब ऐसे विशेष किस्म के लक्षणों के साथ में कोई हमारे पास में आता है, नेत्र विशेषज्ञ के पास में जाता है, तो उसमें मुख्यतः ये देखने की बात होती है कि इसको पराग कणों की एलर्जी है, धूल के कणों की एलर्जी है, खाने पीने की वस्तुओं की एलर्जी है, या उसको अंदरूनी बीमारियों से होने वाली एलर्जी है। इन बीमारियों के लिए कुछ सामान्य किस्म के खून के टेस्टिंग डॉक्टर्स जो है वो करवाते हैं, और उनको कराने में कभी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कराने के बाद में आपको अपने सिस्टम के बारे में पता चलता है और आप उससे अच्छा बचाव कर सकते हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि आंखों की एलर्जी का इलाज अपने आप कभी नहीं रोकना चाहिए, और अपने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह के साथ में ही उसके साथ चलते रहना चाहिए, जब तक कि वो आपको सलाह ना दे कि आपको अपनी ये दवाइयां रोक देनी है। तीसरा ये कि इसमें कुछ खास किस्म की दवाइयां चलती हैं, जिनको हम स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड का लंबा प्रयोग भी कभी कभी आंखों में थोड़ा सा काले पानी या मोतियाबिंद को जन्म देता है, तो उसके साथ जो सावधानियां हैं वो भी नेत्र विशेषज्ञ के संपर्क में रहने से ही पूर्ण की जा सकती हैं। इसलिए सलाह इसमें ये दी जाती है कि अगर आंखों में एलर्जी की बीमारी डायग्नोस्ड हुई है, जिसमें खुजली आना, पानी आना, लाली होना आपको मौजूद है, तो अपने नेत्र विशेषज्ञ के साथ संपर्क में रहें, और जब तक वो आपको ना कहे तब तक अपनी दवाओं का प्रयोग बंद ना करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, शीर्षक था आंखों की एलर्जी। वार्ताकार थे डॉक्टर संजय सेन।

0: नौजवानों से।
1: तो गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि

0: विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
1: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योगी की पाती के माध्यम से बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेलने वाला ही खिलता है। सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाए नहीं। खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। युवाओं के लिए खेल आज कैरियर में सपनों को साकार करने का भी माध्यम है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में विवेचक ने कल जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा

0: विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कल सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को जिले में जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सिद्धार्थनगर के लिए 45 लाख पौधों को रोपित करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 6.25 लाख आज पहली जुलाई से हो चुका है और 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्तर पे और सिद्धार्थनगर में सभी मंडलों में बड़े व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान होगा।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि जारी की। और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
5: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। घरेलू गैस आपूर्ति से जुड़ी पाबंदियां हटी। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज जल डमरू मध्य

से तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य होने के बाद केंद्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर लगाए गए अधिकांश आपातकालीन प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर प्राकृतिक गैस आदेश 2026 में संशोधन करते हुए उन प्रमुख प्रावधानों को हटा दिया जिसके तहत घरेलू और आयातित गैस की आपूर्ति तय प्राथमिकता सूची के अनुसार की जा रही थी। सरकार ने ये आपात व्यवस्था 9 मार्च को पश्चिमी एशिया में संघर्ष के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू की थी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नगर निगम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सामान्य आवेदन शुल्क 2 रूपए से बढ़ाकर 20 रूपए, विलम्ब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रूपए से 50 रूपए और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड का शुल्क 10 रूपए से 100 रूपए कर दिया गया है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

वहीं इग्नू में प्रवेश शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज स्थित इग्नू केंद्र पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र सोमवार से आरटीआई के माध्यम से ओएमआर शीट प्राप्त करने को आवेदन कर सकेंगे। अप्रैल मई में आयोजित परीक्षाओं के घोषित परिणाम वाले छात्र 15 जुलाई तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना वर्ष 2027 के तहत विभिन्न पदों के लिए आयोजित हुए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई का परिणाम इस सप्ताह में घोषित कर देगी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के केंद्रीय श्रेणी तथा जोनल श्रेणी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 25-26 जुलाई को रानीखेत के सोमनाथ ग्राउंड में होगी। इसी दौरान दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा।

पर आइए अब नजर डालते हैं मौसम की जानकारियों पर। ताज नगरी में रविवार को बादलों की बेरुखी के बाद लोगों को भीषण उमस का सामना करना पड़ा। सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच धूप निकलती रही, लिहाजा बीते दिनों हुई बारिश के बाद उमस कई गुना बढ़ गई। खुले में निकलते ही पसीना आने लगा, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। बादलों की आवाजाही और धूप की लुकाछिपी के बीच तापमान में मामूली गिरावट देखी गई। अधिकतम तापमान 36.5

0: 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 80 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 24 घंटों में 11.8 mm बारिश दर्ज की है। जुलाई में अब तक 25.3 mm बारिश हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। मध्यम हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है, जबकि 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी है। इससे जल भराव, यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को जल भराव वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी जा रही है। कार्यक्रम आसपास में सूचनाओं का सिलसिला श्रोताओं हम आगे भी जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं ये मधुर भक्ति गीत।
1: माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

माता सीता, फूल सी सुकुमारी, जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया जाएगा, अर्थात आज परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद से अभ्यर्थियों को कॉलेजों की आवंटन किए जाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने 20 जून को खंडारी परिसर के 6, पालीवाल परिसर के 2, छलीसर परिसर और संस्कृति भवन सहित कुल 10 केंद्रों पर इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। उच्च शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस ने एक नई पहल की है। संस्था ने नए शैक्षणिक सत्र से अंतिम वर्ष की सभी छात्राओं के लिए 3 से 6 माह की व्यावहारिक इंटर्नशिप अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को कक्षा से बाहर निकलकर कॉरपोरेट और औद्योगिक माहौल को समझने और उसका अनुभव लेने की जो कोशिश है उसे कामयाब रूप देने में उनकी मदद करना है।

गोवर्धन के मुड़िया मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रोडवेज ने मुड़िया मेले के लिए भक्तों को गोवर्धन पहुंचाने व वापस लाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मेले के लिए रोडवेज 1000 बसें चलाएगा, 100 बसें रिजर्व में रहेंगी। वहीं मेले के लिए रेल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के लिए रेलवे इस वर्ष भी कई पैसेंजर EMU DMU ट्रेनों का विस्तार मेले की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मथुरा जंक्शन तक करेगा। इसके अलावा कुछ मेला स्पेशल ट्रेनें भी रेलवे भक्तों के लिए चलाएगा। मथुरा जंक्शन स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनेंगे और अधिकारियों की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई जाएगी। मथुरा के गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया

पूर्णिमा मेला 23 से 30 जुलाई तक आयोजित होगा। गुरु पूर्णिमा पर लगने वाले इस मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज महाराज की सात कोस परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। इस बार प्रशासन को पूरे मेले के दौरान करोड़ों भक्तों के लिए उनके आने के लिए पूरी इंतजाम करने हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार गोवर्धन परिक्रमा पर आएंगे।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई निर्धारित की है। छात्र अपने विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 8 जुलाई ही है। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री परीक्षा 8 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। नियमों के अनुसार कक्षा 12वीं में एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहीं सभी विषयों में उत्तीर्ण लेकिन अंक सुधार के इच्छुक छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बीएड प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आगरा कॉलेज से शुरू हो रही हैं। 16 जुलाई तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। छात्रों के प्रयोगात्मक परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त होने पर कॉलेजों को उनके दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध स्थानीय कॉलेजों की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की 91,000 सीटें अभी खाली हैं। स्नातक की 1.50 लाख सीटों पर 59,000 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जुलाई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपना यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है। इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सक्रिय और नया यूएएन बनाने की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर नहीं मिलेगी। इन दोनों सेवाओं को सरकार के उमंग ऐप पर स्थानांतरित कर दिया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं पर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड, सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड तीन पदों पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई सन 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के 209 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से 41 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सभी तरह के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई सन 2026 है।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जूनियर डान के एक पद और गैलरी अटेंडेंट के 5 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर 8 जुलाई सन 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वहीं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने संविदा के आधार पर 19 रिक्तियों के लिए सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट की भर्ती की आधिकारिक घोषणा की है। इच्छुक अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित कर संबंधित दस्तावेजों के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित स्थान पर 9 जुलाई सन 2026 को पहुंचें। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्रोताओं आइए सुनते हैं एक और मधुर भक्ति गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं पर। पहली सूचना के अनुसार

प्रियंका पुत्री सुंदरलाल उम्र 16 वर्ष निवासी ग्राम नगला भरी थाना बसई अरेला आगरा ये दिनांक 13 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका कद 5 फुट 4 इंच रंग गोरा नाक कान आंख सामान्य बाल काले गुमशुदगी के दौरान ये गुलाबी रंग का सलवार सूट पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना बसई अरेला आगरा पर सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार अभय गुप्ता उम्र 32 वर्ष निवासी 15/221 सावित्री धाम अपार्टमेंट 404 घटिया आजम खान थाना हरिपर्वत आगरा ये दिनांक 10 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका कद 5 फीट 8 इंच रंग गेहुआ शरीर की बनावट व चेहरा सामान्य है। गुमशुदगी के दौरान ये नीली शर्ट व काली पैंट पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना हरिपर्वत आगरा पर सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार शिवम पुत्र श्यामलाल उम्र 16 वर्ष निवासी मीरा विहार कॉलोनी उरखरा रोड राजपुर चुंगी थाना सदर बाजार आगरा ये दिनांक 22 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। इनका रंग गोरा कद 4 फीट 5 इंच गुमशुदगी के दौरान ये गेहुए कलर की टी शर्ट सफेद पैंट काली चप्पल और कान में बाली पहने हुए थे। साथ ही इनके हाथ पर मोबाइल नंबर गुदा हुआ है। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना सदर बाजार आगरा पर सूचित करें। और इसी के साथ ही गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं व आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है हमारा अगला अन्य प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा जिसमें सुनेंगे आप समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे।

0: ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की

0: में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र।

0: तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने

0: के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit where he will

0: West Bengal remained an integral part of India. A top front page headline in the Indian Express states, Armed forces seek larger retention of Agniveers after end of four-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says childcare housework keeps 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, A Voice That Brought Beam Alive Falls Silent. Her legend lives forever. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's ninth session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host two-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: उम्मीद है कि जनाब परावो सुबियांतो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली मैदान सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादरे वतन से अपने राबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे।

0: 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परमबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा होगा। सारिफिन उमूर खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक्वामी तंजीमें, सारिफिन तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुजाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है, जिन्हें अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोजा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे, ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
0: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, ऑपरेशनल राबताकारी, सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात, जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरा से निपटने के लिए मुशतरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अलाक़वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादले ख्याल करेंगे। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनक्कद होगी। तफसील हमारे नमनिगार से।
2: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है और इखराजात के बारे में बयान

0: बारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, जिनेवा में मस्नूई जहानत एआई से मुतालिक अक्वाम मुतहदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क्यादत वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारफीन के तहफ्फुज से मुतालिक माहिरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नए इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

उमराव जान। इस फिल्म का गीत भी आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। शब्दशना शहरयार की थी, संगीत खयाम का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर के स्वर में। फिल्म का नाम है फकीरा, गीत के बोल व संगीत रविंद्र जैन का दिया हुआ।

0: फिल्मी गीतों का सफर श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नुसरत फतेह अली खान के स्वर में, बोल आनंद बख्शी की थे, संगीत नुसरत फतेह अली खान का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

वीर जारा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में। बोल जावेद अख्तर के थे, संगीत मदन मोहन का। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर 8 से 11 अगस्त तक लगने वाले ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने अधिकारियों और मेला समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कांवड़ मार्ग पर सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई, चिकित्सा सुरक्षा और मोबाइल शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कांवड़ मार्ग की झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग और विद्युत पोलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सूचना विभाग की ओर से कांवड़ यात्रा ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला परिसर और कांवड़ मार्ग पर CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, निःशुल्क ई रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। डीएम ने अधिकारियों से श्रावण मास की इस कांवड़ यात्रा और मेले की जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। दानवीर भामाशाम की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अस्मिता लाल ने की। इस अवसर पर ADM एवं संयुक्त आयुक्त राज्यकर सहित राज्यकर विभाग के अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनपद में सर्वाधिक जमा कर करने वाली 5 प्रमुख फर्मों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। डीएम ने सम्मानित व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी से कर अदा करने वाले व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जनपद भर में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में कई संस्थान बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के संचालित पाए गए। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और फायर ब्रिगेड वाहनों के पहुँच मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ौद शहर की खतरी गढ़ी समेत जनपद भर में 65 से ज्यादा स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से अग्निशमन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। सरूपुर गांव में उत्तर प्रदेश स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछड़ी जातियों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ गांव में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आयोग को बताया कि गांव में पिछड़ी जाति के कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अभी भी अनेक लोग बुनियादी सुविधाओं

0: से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजी जा सके। बागपत बड़ौत खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन या कॉलोनी का विकास शुरू करने से पहले मानचित्र लेआउट और अन्य आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता का सत्यापन करे। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री से सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराने की मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। इसकी जानकारी शहरी विकास राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने पर बागपत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट में बीबीजी रामजी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों और सहभागिता आधारित विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ी करण हेतु विभिन्न विकास कार्य गतिमान है। दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जनपद की 35 ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल निर्गत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 11 जल संचयन कार्य, तालाब, चेक डैम तथा 24 अन्य विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जानकारी दी कि जनपद चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 11.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इको टूरिज्म पर आधारित श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क का काम चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत इको लॉज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, नेचर ट्रेल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एमपी थिएटर, एडवेंचर गेम्स, सोलर लाइटिंग, पार्किंग, जलापूर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना जनपद चित्रकूट को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।
3: गणेश पार्क के पास टूरिज्म विभाग के माध्यम से श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसकी धनराशि लगभग 12 करोड़ की धनराशि से ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। और इस पार्क का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो है कि वहाँ पे बैठने के लिए एक अच्छा एम्फी थिएटर है लगभग 200 की क्षमता का, साथ साथ बहुत अच्छे श्री राम और रामायण से जुड़े जो हमारे मिरर्स हैं उसकी कहानी पूरी उसमें उकेरी जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एक अच्छा हॉर्टिकल्चर का जो पार्क है वो विकसित और पूरे पाथवे के साथ लगभग 70% कार्य इसका पूरा हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में इसका लोकार्पण जो है वो कर लिया जाएगा।
2: तहसील मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 में निर्मित बरदहा बांध के पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 11.40 किलोमीटर लंबी बरदहा मुख्य नहर एवं उससे संबंधित 14 महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी मानसून में नहर संचालन के माध्यम से कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा छरिया बंदी, बरा माफी टैंक एवं जरिया टैंक को भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
3: लगभग 12 से 14 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है और इससे सभी किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जितनी फसल वर्तमान में जो लेते थे उससे 2 या 3 गुना उससे ज्यादा फसल जो है वो वहाँ पर ले पाएंगे। बरदा डैम को चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो होल्स हैं उनको भी भरा गया।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में लागू नई टेक होम राशन व्यवस्था के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आंगनवाड़ी लाभार्थी हेतु नई पोषाहार रेसिपी के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद की 4 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं, शिशुओं तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। चित्रकूट जिले में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मोरम के खनन पर 3 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने जनपद के संचालित सभी बालू एवं मोरम खनन पट्टा धारकों तथा अनुज्ञा धारकों को निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026

0: तक नदी तल से उप खनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने को कहा है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। चित्रकूट जिले के पशुपालकों के लिए मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 10 गांवों की डेयरी इकाई की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपए है। इसमें लाभार्थी को 15% अंशदान स्वयं करना होगा, जबकि 35% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत 50% लाभ महिला पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था उजाला। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है यकीन।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म यहूदी से। स्वर लता मंगेशकर के हैं, बोल शैलेंद्र के, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

राजतिलक फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले के स्वर में इस गीत को संगीतबद्ध किया था सी रामचंद्र ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्दशः असद भोपाली की संगीत रवि का, और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं डॉक्टर लाल सिंह राजपूत।

डॉक्टर लाल सिंह राजपूत के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

बजरंगी भाईजान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना के स्वर में। धुन बनाई थी प्रीतम ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार हैं जलीस शेरवानी, संगीतकार साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दबंग।

बजरंगी भाईजान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना केके के स्वर में, धुन बनाई थी प्रीतम ने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार हैं जलीस शेरवानी, संगीतकार साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दबंग।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्पेशल 26 से, आवाजें के और MM करीम की है। इस गीत को संगीतबद्ध किया है स्वयं MM करीम ने।

0: स्पेशल 26 का गीत अभी आपने सुना केके और एमएम करीम की आवाजों में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा, मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

खूबसूरत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाजों में। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार जतिन ललित। पापा द ग्रेट, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

पापा द ग्रेट, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत रूप कुमार राठौर और जय श्री शिवराम की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार संजीव दर्शन और फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास।

रूप कुमार राठौर और जय श्री शिवराम की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म कितनी दूर कितनी पास का गीत, और इस गीत के साथ ही सुर सरिता कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विद्याधर व्यास का गाया राग भटियार में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विद्याधर व्यास से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग भटियार। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान गीतकार की जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और शुद्ध हिंदी भाषा को अमर बना दिया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास की। साथियों, जब हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा होती है तब कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है भरत व्यास का। आपने ये सिद्ध किया कि फिल्मी गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाले साहित्य भी हो सकते हैं। आपके गीतों में प्रेम, दर्शन, भक्ति, प्रकृति और राष्ट्र प्रेम है और सबसे बढ़कर भारतीय संस्कृति की आत्मा है। साथियों, आप राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले थे। बचपन से ही आप में लेखन प्रतिभा थी। आपने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए गीतों का सृजन आरंभ किया। आपके द्वारा लिखा पहला गीत था आओ वीरो हिलमिल गाएं वंदे मातरम और आपने फिल्मी जगत में अपना पहला कदम वर्ष 1943 में रखा और दोहाई फिल्म के गीत लिखे जिसको नूरजहां व शांता आप्टे ने गाया। इसके बाद आपने प्रेम संगीत, मन की जीत, पृथ्वीराज संयोगिता और मीराबाई जैसी कई फिल्मों के गीत लिखे। पृथ्वीराज संयोगिता फिल्म में आपने चंद्र बरदाई का किरदार भी निभाया। वर्ष 1944 में आई फिल्म मन की जीत में आपने दो गीत लिखे, ए चांद ना इतराना और आते हैं मेरे सजन। दोनों ही गीत खूब कामयाब हुए। तो साथियों, हम भी सुनवाते हैं आपको ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास के बारे में। साथियों, भरत व्यास के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनमें भारतीय संस्कृति के आदर्श स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। आपके गीत मनुष्य को सत्य, प्रेम, त्याग, सेवा, करुणा और नैतिक जीवन की प्रेरणा देते हैं। आप मानते थे कि साहित्य और संगीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान भी है। आपने अनेक प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें रंगीला राजस्थान, सावन आया रे, बिजली, आंखें, हमारा घर, राजमुकुट, श्री गणेश जन्म, नखरे, भोला शंकर, तमाशा, अपनी इज्जत, नौलखा हार, धर्म पत्नी, परिणीता, श्री चैतन्य महाप्रभु, जगतगुरु शंकराचार्य, अंधेर नगरी चौपट राजा, तूफान और दिया, द्वारिकाधीश, दो आंखें बारह हाथ जैसी कई फिल्में शामिल हैं। ये सभी फिल्में 50 के दशक की हैं। इसी दशक में आपने अपनी कालजयी रचना का सृजन किया। ये रचना है ए मालिक तेरे बंदे हम। साथियों, ये केवल एक फिल्मी गीत नहीं है बल्कि मानवता की प्रार्थना है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मनुष्य सदैव सत्य, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चले। आज भी देश के अनेक विद्यालयों में ये प्रार्थना बड़े श्रद्धा भाव से गाई जाती है। ये गीत समय की सीमाओं को पार कर चुका है। तो साथियों, आइए आपको भी सुनवाते हैं ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास के बारे में। साथियों, भरत व्यास की विशेषता ये थी कि आप कठिन से कठिन भावों को भी सरल शब्दों में व्यक्त कर देते थे। आपके गीतों में साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ लोक जीवन की सहजता भी दिखाई देती है, इसलिए आपके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे। आपने अनेक प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे और हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आपके गीतों को महान संगीत ने स्वर दिए और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे व आशा भोसले जैसे महान गायकों ने अपनी मधुर आवाज से अमर बना दिया। ये गीत हैं जन्म जन्म के फेरे फिल्म का जरा सामने तो आओ चलिए, नवरंग फिल्म का आधा है चंद्रमा रात आधी, रानी रूपमती फिल्म का आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, सारंगा फिल्म का तेरी याद में नैन हुए बेचैन, गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत दिल का खिलौना हाय टूट गया, और ऐसे ही न जाने कितने ऐसे गीत हैं जो आज भी मोहब्बत और एहतराम से गुनगुनाए जाते हैं। तो साथियों, क्यों ना हम भी गुनगुनाएं ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास के बारे में। साथियों, फिल्म की सिचुएशन और मांग के हिसाब से आपने न सिर्फ हिंदुस्तानी जबान में गीत लिखे, बल्कि जब मौका लगा तो शुद्ध हिंदी में भी गीत रचे। इन गीतों में आपकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति इतनी शानदार होती कि निर्देशक या संगीतकार भी आपसे ना नहीं कह पाते। कई ऐसे फिल्मी गीत हैं जो शुद्ध हिंदी में लिखे गए, जैसे तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण, बादलों बरसों नयन की कोर से। सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म का गीत जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। स्त्री फिल्म का आया ऋतुराज बसंत है और रामराज्य फिल्म का डर लागे गरजे बरसिया जैसे गीत सिर्फ बानगी भर हैं। साथियों, हिंदी भाषा पर मजबूत पकड़ के साथ साथ आपको संगीत की भी अच्छी समझ थी, जिसका ये फायदा होता कि गीत लिखते हुए चुटकियों में वो उसकी तर्ज भी बना देते थे। फिल्म जन्म जन्म के फेरे का एक गीत जरा सामने तो आओ छलिए अपने जमाने में बहुत हिट हुआ। इस गीत के बनने के पीछे एक किस्सा है। भरत व्यास ने यह गाना अपने बेटे के बिछड़ने के गम में लिखा था। उनका बेटा नाराज होकर घर से चला गया था। इस वाकये और अपने जज्बात को आपने गीत में ढाल दिया। तो साथियों, आइए हम भी सुनते हैं आपके जज्बातों को इस गीत के माध्यम से।

साथियों, आप सुन रहे हैं आज के कलाकार कार्यक्रम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास के बारे में। साथियों, भरत व्यास ने लगभग 5 दशकों तक अपनी लेखनी चलाई और एक से बढ़कर एक गीतों की रचना की। आपकी शब्द रचना पर भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप मुखरित होता नजर आता है। आपके गीतों की भाषा अत्यंत सरल होने के बावजूद साहित्यिक गरिमा से परिपूर्ण है। आज जब हम आधुनिक गीतों की ओर देखते हैं, तब भरत व्यास के गीतों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके गीत हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं और ये सिखाते हैं कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भाषा की गरिमा या नैतिक मूल्यों से समझौता करना आवश्यक नहीं है। आपकी इस बात को आइए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास के बारे में। साथियों, हिंदी फिल्म संगीत को अपनी कालजयी रचनाओं से समृद्ध करने वाले महान गीतकार भरत व्यास का निधन 4 जुलाई को वर्ष 1982 में मुंबई में हुआ। आपके निधन से हिंदी फिल्म जगत और साहित्य जगत ने एक ऐसे रचनाकार को खो दिया जिसने अपने गीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और शुद्ध हिंदी भाषा को नई प्रतिष्ठा दिलाई। ऐसे गीतकार को हम नमन करते हैं और समर्पित करते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और अब समय है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में जूनोटिक रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विषय पर। साथियों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब पूरी दुनिया स्वास्थ्य संबंधी नई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। कुछ वर्ष पहले आई कोविड-19 महामारी ने हमें ये सिखाया कि मानव का स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी कारण आज जूनोटिक रोगों की चर्चा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जूनोटिक रोग क्या है। जूनोटिक रोग वे संक्रामक रोग हैं जो प्राकृतिक रूप से पशुओं से मनुष्यों में या कभी कभी मनुष्यों से पशुओं में फैलते हैं। इनका कारण वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी अथवा फफूंद हो सकते हैं। ये रोग संक्रमित पशुओं से सीधे संपर्क, दूषित भोजन, पानी, पशु उत्पादों या मच्छर तथा अन्य वाहक जीवों के माध्यम से फैल सकते हैं। हमारे आसपास अनेक ऐसे रोग हैं जो जूनोटिक श्रेणी में आते हैं, जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, लेप्टोस्पायरोसिस, निपाह वायरस और कोविड-19। साथियों, आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि 6 जुलाई को ही विश्व जूनोसिस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई को वर्ष 1885 में महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने पहली बार रेबीज से संक्रमित एक बालक को सफलतापूर्वक टीका लगाया था। ये चिकित्सा विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को पशुजनित रोगों के प्रति जागरूक किया जा सके। साथियों, इस विषय पर हम आपसे और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज विश्व जूनोसिस दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में आज हम बात कर रहे हैं जूनोटिक रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विषय पर। साथियों, यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो पाएंगे कि विश्व भर में पाए जाने वाले लगभग 60% संक्रामक रोग पशुओं से जुड़े हुए हैं तथा नए उभरने वाले अधिकांश संक्रामक रोग भी पशु जनित मूल के ही होते हैं। ये तथ्य अपने आप में बताता है कि यदि पशु अस्वस्थ है और पर्यावरण असंतुलित है तो मनुष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। साथियों, जूनोटिक रोगों के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। जब जंगल कम होते हैं तो वन्य जीव मानव बस्तियों के निकट आने लगते हैं। इससे नए रोगों के मनुष्यों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। बदलते तापमान और वर्षा के स्वरूप से मच्छरों तथा अन्य वाहक जीवों का विस्तार होता है, जिससे अनेक रोग तेजी से फैलते हैं। इसी तरह अन्य कारणों में शामिल है अनियोजित शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या। सीमित स्थानों पर अधिक जनसंख्या और पशुओं का घनत्व संक्रमण के प्रसार को आसान बना देता है। साथियों, जूनोटिक रोगों के बढ़ने के पीछे एक कारण वैश्विक यात्रा व व्यापार भी है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच सकता है। यदि कोई संक्रामक रोग फैलता है तो वो भी सीमाओं में नहीं रुकता, इसलिए हमें जूनोटिक रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, हम आपको ये भी बताएंगे कि जूनोटिक रोगों से कैसे बचा जा सकता है। हमारी चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में जूनोटिक रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विषय पर। साथियों, हमारा देश एक कृषि व पशुपालन प्रधान देश है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पशुओं पर निर्भर हैं। इसलिए जूनोटिक रोगों की रोकथाम भारत के लिए विशेष महत्व रखती है। वर्तमान समय में वन हेल्थ की अवधारणा को सबसे प्रभावी रणनीति माना जा रहा है। इसका मूल सिद्धांत है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि इस किसी भी एक क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इसलिए चिकित्सकों, पशु चिकित्सकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि रोगों की समय रहते पहचान, रोकथाम और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि स्वस्थ मानव, स्वस्थ पशु और स्वस्थ पर्यावरण, इन्हीं तीनों का संतुलन सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में जूनोटिक रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विषय पर। साथियों, जूनोटिक रोगों का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र पर पड़ता है, इसलिए इनकी रोकथाम करना आवश्यक है। इसके लिए हमें सबसे पहले पालतू पशुओं का नियमित टीकाकरण कराना चाहिए। पशुओं के संपर्क के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। बीमार पशुओं के संपर्क से बचना चाहिए और उनकी तुरंत चिकित्सा करानी चाहिए। इसके साथ ही वन्य जीवों के साथ अनावश्यक संपर्क से बचना चाहिए। साथ ही दूध, मांस और अन्य पशु उत्पादों का सुरक्षित एवं स्वच्छ उपयोग करना चाहिए। और सबसे जरूरी यह है कि स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। साथियों, कुल मिलाकर यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक सोच अपनाएंगे और स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे, तो हम न केवल जूनोटिक रोगों को नियंत्रित कर सकेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित व स्वस्थ भविष्य दे सकेंगे, क्योंकि ये जीवन एक मधुबन है।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में जूनोटिक रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विषय पर। साथियों, जूनोटिक रोग आज केवल चिकित्सा विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास से जुड़ा हुआ एक व्यापक मुद्दा है। कोविड-19 जैसी महामारी ने ये सिद्ध कर दिया कि मानव, पशु और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना सुरक्षित भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्व जूनोसिस दिवस हमें ये संदेश देता है कि जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वच्छता, नियमित टीकाकरण और वन हेल्थ की अवधारणा को अपनाकर ही इन रोगों की रोकथाम संभव है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और सरकार, वैज्ञानिक समुदाय तथा समाज मिलकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ, सुरक्षित और रोगमुक्त भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, आइए आज हम सभी विश्व जूनोसिस दिवस पर ये संकल्प लें कि स्वस्थ भारत का निर्माण केवल बेहतर चिकित्सा से नहीं, बल्कि सुरक्षित पशुधन, संरक्षित पर्यावरण व जागरूक नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही होगा, क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी भारत सुरक्षित होगा। तो श्रोताओं, इसी चर्चा के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार

0: चनवाल एनसीईआरटी के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर चनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता

0: शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या

0: अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है, कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा

0: योग के बारे में बता दिया या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहें। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थी में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा

0: करेंगे,
1: अपने
0: विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार,
1: जी
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी,
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना।
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है।
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें

0: टाइम टेबल
1: ये
0: नियमली हम बनाए, टाइम टेबल हम एक बनाए, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8440432 8448440632, ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसी के साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम NCERT यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते

विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल और साथियों की मधुर आवाजों में फिल्म दोस्ताना का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं अन्विता दत्त ने, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ताना का ये गीत। आइए अब सुनते हैं दम मारो दम फिल्म का ये गीत, जुबिन गर्ग की आवाज में। जसदीप सहानी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे दम मारो दम फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से। शिल्पा राव की मधुर आवाज में स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को अपने खूबसूरत संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की मधुर आवाजों में फिल्म गर्लफ्रेंड का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं प्रवीण भारद्वाज ने, धुन बनाई है डब्बू मलिक ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गर्लफ्रेंड का ये गीत। आइए अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में आई मी और मैं फिल्म का ये गीत। मयूरपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है तरुण भंडारी ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म आई मी और मैं का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं जसबीर जस्सी और सोनिया शर्मा की आवाजों में फिल्म स्वीटी वेट्स एनआरआई का ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जसबीर जस्सी और सोनिया शर्मा की आवाजों में फिल्म स्वीटी वेट्स एनआरआई का ये गीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: जनाब योगी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत मुसलसल तरक्की पर मबनी और अवामी बहबूद के काम कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस मौके पर बीजेपी की कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि माजी में हमारी कयादत उन मसाइल के बारे में अवाम के तई चौकस रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ था। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के सीनियर लीडरों, साबिक सुदूर और एनडीए के इत्यादियों के साथ एक अहम मीटिंग की। मुलाकात के दौरान 2027 के असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सदर नितिन नवीन ने खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर खसूसी जोर दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है। इजलास में कई अहम इंतजामी और मालियाती उमूर जेर बहस आएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस दरमियान अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा केस में तफ्तीशी अफसर ने कल जिला जेल में 8 में से 5 मुलजमीन से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के काली घाट पर वाक़ प्रेरणा पार्क का इफ्तिताह करेंगे। इस पार्क में वो कौम की तामीर के आलमबरदार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय सकाफत के आलमबरदार अशोक सिंघल के मुजस्मों की नकाब कुशाई करेंगे। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी गारंटी मिशन देही 2025 के कामयाब निफास पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को सिर्फ एक दिन में पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। कल मरकजी वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की। रियासती पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि हुकूमत गांव में उत्सव भवन तामीर करेगी। इन उत्सव भवनों में कम आमदनी वाले अफराद कम कीमत पर शादी और दीगर तकरीबात का इनेकाद कर सकेंगे। अंबेडकर नगर में जिला पंचायत सदर के दफ्तर के इफ्तिताह के दौरान जिला इंचार्ज वजीर ने कहा कि जिला पंचायत महकमा देही इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर जिला पंचायत सदर साधु वर्मा और जिला मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, मैं वंदना तुली कार्यक्रम घर संसार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहनों, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। परिवार की

0: खुशियों की नींव भी अच्छे स्वास्थ्य पर ही टिकी होती है। लेकिन कई बार बीमारियों का खतरा केवल इंसानों से ही नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद पशु पक्षियों से भी हो सकता है। बहनों, इन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है। लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी हमें इन बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है। आइए जानें ये रोग है क्या। जूनोटिक रोग वो बीमारियां हैं जो संक्रमित पशुओं, पक्षियों और अन्य जीवों से मनुष्यों में फैलती हैं, और ये संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवियों के कारण हो सकता है। रेबीज, बर्ड फ्लू, ब्रुसेलोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसे रोग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये रोग संक्रमित जानवर के काटने, उसके खून, लार या मल मूत्र के संपर्क में आने, दूषित भोजन या बिना उबाला दूध पीने और अस्वच्छ वातावरण के कारण फैल सकते हैं। बहनों, इनसे बचाव के लिए कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले कि पालतू पशुओं का समय समय पर आप टीकाकरण करवाएं। जानवरों को छूने या उनकी देखभाल के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। मांस, अंडे और दूध का अच्छी तरह पकाकर या उबला हुआ ही आप सेवन करें। और ध्यान रखें कि किसी भी बीमार या मृत जानवर के आप सीधे कॉन्टेक्ट में आने से बचें। और यदि किसी जानवर के काटने या खरोचने की घटना हो भी जाए तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोकर चिकित्सक से संपर्क करें। तो बहनों, याद रखिए, सतर्कता, स्वच्छता और समय पर उपचार ही जूनोटिक रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। याद रखें, पशुओं का स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ जीवन की शुरुआत जागरूकता से ही होती है, इसलिए जूनोटिक रोगों के प्रति सतर्क रहें, स्वच्छता अपनाएं और अपने पालतू पशुओं की नियमित देखभाल और टीकाकरण कराएं, क्योंकि यही छोटी छोटी सावधानियां बड़े खतरे से बचा सकती हैं। तो बहनों, जीवों पर दया करना हमारी संस्कृति और मानवता की पहचान है। लेकिन दया का अर्थ केवल उन्हें भोजन देना या प्यार करना ही नहीं है बल्कि उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। आइए, करुणा और जिम्मेदारी दोनों का साथ निभाएं और सुनते हैं दिव्यानी दुबे की ये वार्ता, जीवों पर दया करना मानवता है।
1: बहनों, परमात्मा ही इस जगत का आधार व नियंता है। सत्य व अहिंसा उसकी प्राप्ति के प्रमुख साधन है। सभी जीव ईश्वर की संतान होने के कारण मूलतः समान हैं और उनकी सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा व उपासना है। इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये वह सिद्धांत हैं जो सभी धर्मों का सार है। जानवरों से प्यार, जीवों पर दया व उनकी सेवा हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। छोटे जीव पर जब पैर पड़ जाता है या गाड़ी के नीचे कोई जीव आ जाता है तो हमें दुख होता है। हम मनुष्यों की तरह ही पशुओं को भी अपना जीवन प्यारा होता है। वे भी पीड़ा तथा सुख दुख की इसी प्रकार अनुभूति करते हैं। हम मनुष्यों की तरह ही वह भी संवेदनशील होते हैं, पर मनुष्य अपने जन्मजात गुण मानवता का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहा और पशुओं पर कई बार अत्याचार कर बैठता है। जब तक मनुष्य अपनी ही तरह पशु पक्षियों की पीड़ा अनुभव करना नहीं सीखता, तब तक वह मानवता के पद से कोसों दूर रहेगा। सच्चा मानव वह है जो अन्य पशु पक्षी एवं प्राणियों के साथ दया, करुणा तथा प्रेम का व्यवहार करे। समानता, दया एवं करुणा के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का महान सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। संसार के सभी धर्मों में जीव जंतु से दया भावना रखने पर जोर दिया गया है। मूक जीवों की सेवा में तत्पर रहें, क्योंकि वह अपना दर्द बोलकर बयान नहीं कर सकते। हमें उनके प्रति सेवा भाव को नहीं भूलना चाहिए। यह परम सुख प्रदान करने वाला गुण है जो मन को शांति देता है। अगर किसी को कोई भी ऐसा मूक प्राणी दिखाई दे जिसे तत्काल सहायता की जरूरत हो तो थोड़ा रुकें और उसकी सहायता करें। पहले के समय में जीवों के रहने के लिए निश्चित स्थान होते थे, परंतु अब इन जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे और लकड़ी या पत्तों की छत होती थी। तब जीव जंतु हमारे घर में ही अपना घर बनाकर रहते थे।

पर आज आधुनिकता के दौर में व हमारे रहन सहन में बदलाव के चलते जीव जंतुओं के लिए पक्के मकानों में घर बनाना मुश्किल हो गया है। साथ ही पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, परंतु अब शहरीकरण के चलते अधिकांश वनों को नष्ट कर दिया जा चुका है। इससे जीव जंतुओं को रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जीव जंतुओं की प्रजातियां दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। हमारे देश में बहुत से जीव जंतु ऐसे भी हैं जो दुर्घटना का शिकार होकर मारे जाते हैं। हम सभी को चाहिए कि उनकी हर तरह से रक्षा करने की कोशिश करें और उन पर दया करें। यदि हमें कोई जीव दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दे तो उसका उचित इलाज करवाएं। अगर इलाज न करवा पाएं तो उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जीव को बंधक बना लेते हैं तथा उनके कष्ट में आनंद के पल खोजते हैं, जबकि हम सभी को जीवों की हर तरह से सेवा करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। जब भी हम घर पर किसी जीव को पालते हैं तो उसे हम भोजन देते हैं एवं उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा जीव हमें बाहर मिल जाता है तो उसे हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं। पहले के समय में ज्यादातर घरों में पशु पक्षी पाले जाते थे, लेकिन शहरीकरण व पर्याप्त स्थान के अभाव में उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण गायों को पालते हैं, पर जब वह दूध देना बंद कर देती हैं तो वह उन्हें खुला छोड़ देते हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए कुछ लोग कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, चूहे आदि पाल लेते हैं, परंतु उनके अस्वस्थ या बूढ़े हो जाने पर उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को देखने चिड़ियाघरों में जाते हैं, वहां पिंजरे में बंद जीव जंतुओं को तरह तरह से परेशान करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। हमें त्योहारों या अन्य अवसरों पर तेज आवाज करने वाले पटाखे इत्यादि नहीं चलाने चाहिए। इससे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही यह पशुओं की सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। जानवरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्हें छेड़ने या मारने वाले लोगों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। पशु पक्षी, वनस्पति, प्राकृतिक परिवेश और मनुष्य मिलकर हमारे विश्व का निर्माण करते हैं और उसे रहने लायक बनाते हैं। विश्व अथवा हमारी धरती के विकास में इनमें से प्रत्येक की निश्चित और महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग मिलकर मनुष्य की रचना करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जीव जंतु, नदियां, पर्वत, वन, झीलें और मनुष्य हमारे प्रकृति के अलग अलग भाग हैं। भारत के समृद्ध वन्य प्राणी हमारी प्राकृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। देश के गौरव के रूप में इनकी रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक आवास छिनने और चोरी छुपे किए जाने वाले शिकार के कारण कई वन्य प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन अति आवश्यक है। इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया जाए तो इस क्षति के दूरगामी परिणाम इतने भयावह होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैव विविधता का खत्म होना एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु इसके खत्म होने पर धरती की पूरी प्रणाली ढह जाएगी। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप जो जीव दिए हैं उनको देखने मात्र से ही मन में बड़ा सुकून मिलता है। वह हमारी भाषा नहीं समझते, परंतु उनके व्यवहार से पता चलता है कि ये भी अपने सामाजिक अस्तित्व को कुछ हद तक जानते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी हमारे पर्यावरण की शोभा हैं, लेकिन मानव ने वन्य जीवों का शिकार इस निर्ममता के साथ किया है कि कुछ प्राणियों की प्रजाति ही लुप्त प्राय हो गई हैं और कुछ अपने

0: अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेड़ों को काटकर हम पशु पक्षियों का घर उजाड़ रहे हैं। इसमें धरती का संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, मानव के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इन जीवों की रक्षा करने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कानून और नई नई योजनाएं बनाकर हमें इस ओर प्रयासरत रहना चाहिए।
1: मैनू, अभी आपने सुनी दिव्यानी दुबे की वार्ता, जीवों पर दया करना मानवता है, क्योंकि हमारी छोटी सी संवेदनशीलता किसी बेजुबान के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: मैनो, जब भी हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमें याद आती है भारत की संस्कृति और इसके राज्य, जिसकी अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी हम सब एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। और जब बात हो रही है भारत के विभिन्न राज्यों की, तो आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उत्तरतम पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख की उस सांस्कृतिक धरोहर की ओर, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ, शांत बौद्ध मठ और रंग बिरंगी परंपराएं मिलकर एक अद्भुत उत्सव का रूप लेती हैं, और वो उत्सव है हेमिस उत्सव, लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध और भव्य बौद्ध उत्सव, जो हेमिस मठ में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैनो, लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये स्थित है हेमिस मठ, लद्दाख का एक प्रमुख और समृद्ध बौद्ध मठ माना जाता है। ये उत्सव गुरु पद्म संभव, जिन्हें द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है, की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। बौद्ध परंपरा में गुरु पद्म संभव को तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला महान गुरु माना जाता है। ये उत्सव जून या जुलाई में तिब्बती पंचांग के अनुसार मनाया जाता है और ये 2 दिनों तक चलता है। इस दौरान हेमिस मठ का प्रांगण रंगों, संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों से जीवंत हो उठता है। और बहनों, उत्सव का सबसे आकर्षक पक्ष है यहाँ का चाम नृत्य। इस नृत्य में बौद्ध भिक्षु रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र और विशेष मुखौटे पहनकर धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक संदेशों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मैनो, चाम नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक भी माना जाता है। उत्सव के दौरान थंका चित्रों का प्रदर्शन भी किया जाता है। थंका जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र चित्र होते हैं, जिनमें बुद्ध, गुरु पद्म संभव और अन्य धार्मिक प्रतीकों का चित्रण भी किया जाता है। मैनो, हेमिस उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। और इस अवसर पर स्थानीय लोग पारंपरिक लद्दाखी परिधान पहनते हैं, लोग संगीत प्रस्तुत करते हैं और अपनी समृद्ध हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन भी करते हैं। दूर दूर से आने वाले पर्यटक इस उत्सव के माध्यम से लद्दाख की आध्यात्मिकता, कला, संगीत और लोक जीवन को करीब से अनुभव करते हैं। बहनों, ये उत्सव हमें बताता है कि हमारी धरती की हर संस्कृति, हर परंपरा और हर लोक उत्सव हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। बहनों, फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहेगा, लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: मेनो, आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं होती, बल्कि हमारी भावनाओं और व्यक्तित्व का आईना भी होती है। इन्हीं आंखों की खूबसूरती को और निखारने का सबसे आसान और सदाबहार तरीका है काजल। मैंने चाहे पारंपरिक लुक हो या मॉडर्न स्टाइल, काजल हर उम्र और हर अवसर पर आपके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। कहते हैं काजल भारतीय श्रृंगार का एक अहम हिस्सा रहा है। ये आंखों को गहराई और आकर्षण देने के साथ साथ पूरे चेहरे की रौनक भी बढ़ा देता है। मैंने यदि आपकी आंखें छोटी हैं, तो निचली वाटर लाइन पर हल्का काजल लगाने से वे अधिक उभरी हुई और सुंदर दिखाई देती हैं। वहीं अगर आप स्मोकी लुक चाहती हैं, तो काजल को हल्का सा स्मज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे काजल लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी और त्वचा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण किए गए काजल का ही उपयोग करें। और यदि आपकी आंखें संवेदनशील हैं, तो हाइपोएलर्जेनिक प्रोडक्ट ही चुनें। और सोने से पहले मेकअप रिमूवर या नारियल के तेल की मदद से काजल पूरी तरह से साफ कर लें, ताकि आंखों में इन्फेक्शन या जलन ना हो। और बहनों, अगर आप लंबे समय तक टिकने वाला लुक चाहते

ती हैं तो काजल लगाने के बाद उसी रंग का हल्का सा आई शेडो या थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप लगा सकती हैं। इससे काजल जल्दी नहीं फैलेगा। याद रखें, खूबसूरती केवल मेकअप से नहीं बल्कि स्वस्थ आँखों से भी आती है। तो इसके लिए बहनों, आप पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार खाएं और आँखों की नियमित सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि जब आँखें स्वस्थ होंगी तब काजल का आकर्षण भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो बहनों, अगली बार जब आप तैयार हों तो अपनी आंखों की खूबसूरती को काजल की एक खूबसूरत रेखा से जरूर सवारें। तो बहनों, बात हो रही है काजल की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैनू, अब सजने सवरने की बातें तो हो गई हो तो चलिए अब रुक करते हैं रसोई की ओर और बनाते हैं मखाना दही चाट रेसिपी टाइम में। मैनू, मखाना दही चाट स्वादिष्ट भी है और कुछ ही मिनटों में तैयार भी हो जाता है, तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए चाहिए आपको सामग्री 2 कप मखाने, 1 कप गाढ़ा फेंटा हुआ दही, 1 छोटा उबला हुआ आलू कटा हुआ और 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, बारीक सेव, हरा धनिया और अनार के दाने सजाने के लिए। तो मखाना दही चाट बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को बिना घी या 1 चम्मच आप घी ले सकती हैं उसमें हल्का कुरकुरा होने तक भून लें। अब एक बाउल में भुने हुए मखाने, उबला आलू और प्याज डालें। इसके ऊपर फेंटा हुआ दही डालें, उसके ऊपर फिर हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी अपनी पसंद के अनुसार आप डाल सकती हैं। अब इसमें भुना जीरा, लाल मिर्च, काला नमक छिड़के, अगर आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप उसके साथ साथ सेंधा नमक भी डाल सकती हैं। लास्ट में सेब, हरा धनिया और अनार के दानों से सजाकर तुरंत परोसें। तो लीजिए, कुछ ही मिनटों में तैयार हो गई स्वाद और सेहत से भरपूर मखाना दही चाट वाली रेसिपी। इसे आप शाम के नाश्ते या मेहमानों के स्वागत में भी आप परोस सकती हैं। तो बहनों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी यहीं समाप्त हुआ जा रहा है। कार्यक्रम घर संसार समाप्त करने की अपनी सखी वंदना तुली को भाग्य दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मेधा सचदेवा की आवाज में गीत व भजन। तो आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

श्रोताओ, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं डॉक्टर मेधा सचदेवा की आवाज में गीत व भजन। आइए सुनते हैं उनका ये भजन।

साथियों, इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ तकानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ तकानेन।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल

0: में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम परवीन सुल्ताना से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं मिश्र पीलू धुन।

श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग मिश्र पीलू। आइए अब सुनते हैं राग मिश्र पहाड़ी में ये ठुमरी गायन।

से ठुमरी गायन आप प्रस्तुत कर रही थी मिश्र पहाड़ी धुन। आइए उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनते हैं गुलाम मुस्तफा से गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमास।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गुलाम मुस्तफा से गायन, आप प्रस्तुत कर रहे थे राग खमाज। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:45 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आराधना से। आवाज दी है किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है एसडी परमन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आराधना का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म कन्यादान का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हज़रत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कन्यादान फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों पर आधारित भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए सुनते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति सोनू निगम की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है उत्तम सिंह की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में कल हो ना हो फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत रचना है शंकर एहसान लॉय की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में कल हो ना हो फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं रंगीला फिल्म का ये गीत। आवाज़ दी है उदित नारायण ने, महबूब के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में रंगीला फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं ए हरिहरन और सुरेश वादकर की आवाजों में फिल्म माचिस का ये गीत। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत रचना है विशाल की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बरसात फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म बरसात का ये गीत। शब्द रचना थी समीर की, संगीत रचना थी नदीम श्रवण की। इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहर कालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी

0: गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मानव वन्य जीव संघर्ष। नई पहल में जानेंगे राष्ट्रीय SC ST हव योजना के बारे में। इतिहास के पन्नों से जानेंगे संथाल विद्रोह। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा वृक्षों की पर्यावरणीय भूमिका। वार्ताकार होंगे प्रांजल टमटा। साथ ही सुनेंगे चलते चलते। शाम 6 बजे समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा जूनोटिक रोग, कारण, लक्षण और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुधीर कुमार रावत। साथ ही सुनेंगे नई किस्में, मंडी भाव, मौसम और कुछ लोकगीत। मजदूर मंडल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा प्लास्टिक से मुक्ति और जन सहयोग। साथ ही सुनेंगे घरेलू नुस्खे, आज की पाती, ज्ञान सागर, आज का प्रश्न और फिल्म संगीत।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के उपलक्ष्य में वार्ता, जिसका विषय होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। वार्ताकार होंगी डॉक्टर प्रभा माधुनी। रात्रि 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मों से गजलें कार्यक्रम शामे गजल में। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हेलो मेरी पसंद। संवादक होंगी विशेषता शर्मा, प्रस्तुत करता होंगे अनेंद्र सिंह।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे पंडित जसराज। आप प्रस्तुत करेंगे राग धूलिया मल्हार में ख्याल गायन।

ये थी हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है अमित त्रिवेदी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है केदारनाथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत है हरिहरन की आवाज में, शब्द रचना है उदय शंकर पांडी की, संगीत दिया है सुरिंदर कोहली ने, फिल्म का नाम है चार धाम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत। सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्द रचना है समीर की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार युवा साथियों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, जिंदगी के भागदौड़ में हम सब कभी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, कभी करियर की तैयारी में, तो कभी अपने भविष्य को लेकर बेहतर कोशिश करने में। लेकिन इन सब के बीच अपने आसपास होने वाली घटनाओं, अपने समाज, अपने इतिहास और देश में चल रही नई पहलों से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक जागरूक युवा ही एक सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र की पहचान होता है। दोस्तों, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर नया दिन हमें कुछ नया सीखने, सोचने, समझने और जानने का अवसर देता है, और यही कोशिश रहती है हमारे इस कार्यक्रम युववाणी की, जहाँ बात होती है युवाओं की, उनके विचारों की और उन विषयों की जो हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त अपूर्वा परिहार आप सभी का आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम युववाणी में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा के साथ। दोस्तों, इंसान और प्रकृति का रिश्ता सदियों पुराना है। हम सभी जानते हैं कि जंगल, नदियाँ और वन्य जीव हमारी प्राकृतिक धरोहर है, लेकिन बदलते समय के साथ विकास की रफ्तार तेज हुई है। नई सड़कें बनी, शहरों का विस्तार हुआ और जंगलों का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता गया। ऐसे में एक सवाल बार बार आता है, क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं? दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी से जुड़ी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह सुबह अखबार की हेडलाइन आती है, गांव में हाथियों का झुंड घुस गया, तेंदुआ इलाके में दिखाई दिया, ट्रेन की चपेट में कई हाथियों की मौत। ऐसे समाचार अब कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर सुनने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वन्य जीव इंसानों के इलाकों में आ रहे हैं या इंसान उनके घर तक पहुंच गए हैं? दोस्तों, यही

है आज का हमारा विषय मानव वन्यजीव संघर्षण, यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जब इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संसाधनों, जगह या सुरक्षा को लेकर टकराव होता है तो उसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। लेकिन ये संघर्ष अचानक पैदा नहीं होते, इसके पीछे हैं कई कारण। आज विकास की रफ्तार बहुत तेज है, नई सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, शहरों का विस्तार हो रहा है और ये विकास जरूरी भी है। लेकिन इसके साथ जंगलों का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन यानी जंगलों का छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाना वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। ऐसे में जानवर भोजन और पानी की तलाश में गांव और शहरों की ओर आने लगते हैं। कभी खेतों में नीलगाय या जंगली सुअर फसलें नुकसान कर देते हैं तो कभी हाथी गांव में घुस जाते हैं। दूसरी ओर सड़क और रेल दुर्घटनाओं में कई वन्य जीव अपनी जान खो देते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए आज एक संकल्प लेते हैं कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि साथी मानेंगे, क्योंकि जब इंसान और प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ेगी तभी एक सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य का निर्माण होगा। तो दोस्तों, ये हमने अभी बात की मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संपर्क और उससे जुड़ी चुनौतियों की। इसी से जुड़ा है आपका आज का सवाल भी। दोस्तों, जब इंसानों और जानवरों का संपर्क बढ़ता है तो कुछ बीमारियां भी एक दूसरे से फैलती हैं। इन्हीं बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज यानी 6 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है। तो आप पता कीजिए इसका जवाब। हम मिलेंगे आपसे इस मधुर संगीत के बाद।

0: श्रोताओं, गीत से पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। दोस्तों, मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संपर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है जूनोटिक बीमारियां। ये ऐसी संक्रामक बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। इन्हीं बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें जल, वायु, भूमि और वनस्पतियों जैसे अनमोल उपहार दिए हैं। इनमें वृक्ष केवल हरियाली का प्रतीक नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के आधार भी हैं। वे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जब पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की प्राथमिकता बन चुका है, ऐसे में वृक्षों के महत्व को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज की हमारी विशेष वार्ता का विषय है वृक्षों की पर्यावरणीय भूमिका। इस विषय पर अपने विचार साझा करेंगे प्रांजल टमटा। तो आइए सुनते हैं ये विशेष वार्ता।
1: वृक्ष इस ग्रह और हम इंसानों की श्वास, धड़कन और जीवन रस है। यदि वृक्ष ना हो तो ना वर्षा होगी, ना वायु शुद्ध होगी, ना खाद्य श्रृंखला का संतुलन बनेगा और ना ही मानव सभ्यता का अस्तित्व संभव होगा। विज्ञान हमें यह बताता है कि एक परिपक्व वृक्ष प्रतिदिन उतनी ऑक्सीजन प्रदान करता है जितनी 4 से 5 मनुष्यों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात IPCC की रिपोर्ट में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी साधन केवल वृक्ष ही है। यदि हम पृथ्वी पर वृक्षों की संख्या बढ़ाते हैं तो यह पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विज्ञान हमें यह भी बताता है कि वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वाटर वेपर के माध्यम से वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं। प्रकृति का संसार जितना ऊपर दिखाई देता है उससे कई अधिक अद्भुत रहस्य धरती के नीचे छिपे होते हैं। जंगलों में पेड़ पौधे केवल खड़े नहीं रहते बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, संसाधन बांटते हैं और एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। इस अदृश्य संसार प्रणाली को वुड वाइड वेब कहा जाता है। यह प्रकृति का अपना इंटरनेट है जो पेड़ों और पौधों को एक विशाल नेटवर्क में जोड़ता है। विश्व प्रसिद्ध वन पारिस्थिति की वैज्ञानिक सुजेन सिमार्ड ने अपने शोध में सिद्ध किया कि जंगल के पेड़ एक दूसरे से लगातार संवाद करते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को वुड वाइड वेब नाम दिया। वुड वाइड वेब भूमिगत कवक और उनके महीन जाल जैसे धागे माइकोराइजा के माध्यम में बनाया गया एक प्राकृतिक नेटवर्क।

है। ये कवक पेड़ों की जड़ों से जुड़कर एक भूगर्भीय संचार प्रणाली का निर्माण करते हैं। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ आपस में पोषक तत्व, पानी, हार्मोन और रासायनिक संकेत भेजते हैं। जैसे इंटरनेट डेटा साझा करता है, उसी तरह यह नेटवर्क ऊर्जा, जानकारी और सुरक्षा संदेश साझा करते हैं। एक कवक का जाला कई पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़ता है। इस तरह हजारों पेड़ एक सुपर नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। इस नेटवर्क में मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करते हैं मदर ट्री। बड़े और पुराने पेड़ वृक्षों को मदर ट्री कहा जाता है। वे अपने आसपास के छोटे पौधों और कमजोर पेड़ों को पोषण और सुरक्षा संकेत भेजते हैं। यदि कोई पौधा सूर्य की रोशनी नहीं पा रहा, तो मदर ट्री उसे ऊर्जा भेज सकता है। जब जंगल काटे जाते हैं, तो वुड वाइड वेब टूट जाता है। जल संरक्षण में भी वृक्ष अहम भूमिका निभाते हैं। जल के बिना धरती पर जीवन की कल्पना असंभव है, और जल के स्रोतों को सुरक्षित रखने में वृक्षों की भूमिका सर्वोपरि है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन क्षेत्रों में वृक्षों की अधिकता होती है, वहाँ वर्षा का स्तर अधिक होता है। वृक्ष केवल स्वयं जीवित नहीं रहते, बल्कि वे लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों को भी जीवन प्रदान करते हैं। एक परिपक्व वृक्ष पर कई सारे जीव अपना आश्रय प्राप्त करते हैं। वृक्ष जैव विविधता की रक्षा करते हैं और समूची खाद्य श्रृंखला का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला टूटती है, तो मानव सहित सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। अथर्वेद में कहा गया है कि वृक्षो रक्षति रक्षतः, अर्थात यदि हम वृक्षों की रक्षा करते हैं, तो वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को केवल पेड़ नहीं, बल्कि जीवनदाता, पर्यावरण रक्षक और आध्यात्मिकता का आधार माना गया है। पीपल को जीवन का, बरगद को स्थायित्व और आयुष्मान का, जबकि नीम को आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। आम, नीम, सागौन, अर्जुन, महुआ जैसे वृक्ष न केवल खाद्य और औषधि प्रदान करते हैं, बल्कि किसानों की आजीविका का आधार भी हैं। भारत में अधिकतर ग्रामीण नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। वही शहरी क्षेत्रों में वृक्ष प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, तापमान को कम करते हैं और ध्वनि प्रदूषण को भी रोकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वृक्षों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में तापमान भी कम रहता है। औषधीय दृष्टि से भी वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में अधिकतर औषधियाँ वृक्षों और वनस्पतियों से प्राप्त होती है। नीम, तुलसी, आंवला, अदरक, अश्वगंधा जैसे पौधों को जीवन रक्षक पौधा माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर पर औषधीय पौधों की रक्षा नहीं की गई, तो आने वाले समय में दवाओं का संकट गहरा हो सकता है। और अगर वृक्षों की रक्षा नहीं की गई, तो सिर्फ दवाई नहीं, बल्कि पर्यावरण संकट भी गहरा हो सकता है। पर्यावरण संकट का मतलब है वह स्थिति जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण इतना प्रभावित हो जाता है कि मानव जीवन और धरती पर मौजूद अन्य जीव जंतु खतरे में पड़ जाते हैं। तापमान में बढ़ोतरी, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, बाढ़, सूखा, ओजोन परत में छेद, पेयजल संकट और वायु प्रदूषण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आज पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना। वृक्ष इन गैसों को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करता है, लेकिन जब पेड़ों की कटाई होती है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। औद्योगिक विकास, शहरीकरण, वनों की कटाई और अत्यधिक प्रदूषण ने वातावरण को असंतुलित कर दिया है। इस संकट का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है वृक्षारोपण। संयुक्त राष्ट्र ने वन ट्रिलियन ट्री कैंपेन की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व में 1 ट्रिलियन वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन नीति, विद्यालय पेड़ लगाना अभियान और नमामि गंगे कार्यक्रम पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके माध्यम से लाखों वृक्ष लगाए गए हैं और वनावरण में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इतिहास में भी हमने कई आंदोलन देखे, जिसमें आम लोगों ने भी आगे बढ़कर वृक्षों को बचाने के सफल प्रयास किए। चिपको आंदोलन ने यह संदेश दिया है कि वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, जीवन है। इसी प्रकार कर्नाटक में

0: इको आंदोलन ने जन जागृति फैलाई और लाखों वृक्षों को कटने से बचाया। इन आंदोलनों ने सिद्ध किया कि जब जब जन सहभागिता और वृक्ष संरक्षण का संकल्प एक साथ आते हैं तो पर्यावरण को नया जीवन मिलता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि वृक्ष केवल प्रकृति की सजावट नहीं है बल्कि हमारे जीवन की आवश्यकता है। आइए हम संकल्प ले कि पेड़ लगाना केवल एक कार्यक्रम ना होकर जीवन का उत्सव बने। हर व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए और उसकी रक्षा करे।
1: तो श्रोताओं, ये थी प्रांजल तमता द्वारा प्रस्तुत विशेष वार्ता वृक्षों की पर्यावरणीय भूमिका। इसके बाद आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, हर युवा चाहता है कि उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। कई बार हुनर तो होता है लेकिन सही मार्गदर्शन और संसाधनों की कमी आगे बढ़ने में बाधा बन जाती है। ऐसे में सरकार की कई योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं और उन्हीं में से एक है राष्ट्रीय SC/ST हब योजना। दोस्तों, देश के विकास में हर वर्ग की समान भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जनता को क्षमता विकास, कौशल प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच, तकनीकी सहायता, वित्तीय मार्गदर्शन और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की जानकारी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका मकसद इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में व्यवसाय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई नया व्यवसायिक विचार है और आप SC/ST वर्ग से संबंधित हैं, तो ये योजना आपके सपनों को नई उड़ान देने में सहायक हो सकती है। सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर युवा न केवल स्वयं आगे बढ़ सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ें और अपना लक्ष्य पूरा करें। तो दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट नई पहल। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, वर्तमान को समझने के लिए अतीत को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी है। हमारे देश की आजादी में कई ऐसे वीरों का योगदान रहा जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन उनका साहस और बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, ऐसा ही एक विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं सेगमेंट इतिहास के पन्नों से, जहां आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की। ये विद्रोह 1855 में झारखंड के भोगनाडीह गांव से शुरू हुआ। इस आंदोलन को चार भाइयों ने मिलकर शुरू किया। उस समय संथाल आदिवासी समुदाय बहुत परेशान थे। अंग्रेज सरकार भारी लगान वसूलती थी और स्थानीय जमींदार और साहूकार उन्हें कर्ज और शोषण में फंसाते थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। इन्हीं समस्याओं के खिलाफ संथाल लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई और विद्रोह किया। उन्होंने तय किया कि अब अन्याय को और सहन नहीं किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़े और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत सख्ती से दबा दिया, लेकिन यह आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। इसने पूरे देश को ये दिखाया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। साथ ही संथाल विद्रोह हमें ये सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन एकता और साहस भी साथ जरूरी है।

दोस्तों अब समय है चलते चलते में एक प्रेरणादायक शख्सियत को याद करने का, जिनका आज हम जन्मदिवस भी मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से लेकर देश की राजनीति तक अपनी मजबूत पहचान बनाई। वे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रियों में से एक थे और एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों उनका स्पष्ट संदेश था, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चल सकते, यानी भारत की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। उन्होंने देश की एकता के लिए आवाज उठाई और अपने विचारों पर अडिग रहे। और दोस्तों यही नहीं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब बात देशहित की हो तो साहस और सिद्धांतों पर टिके रहना ही असली देशभक्ति है। इसी प्रेरणा के साथ हमें आज्ञा दें, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं और आप प्रस्तुत है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

कार्यक्रम ग्रामलोक की चौपाल में बैठकर अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुन रहे सभी भाई बहनों को लोकेंद्र पाठक की राम राम। साथियों, आज हम भारत के महान शिक्षाविद, चिंतक और राष्ट्र सेवी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत माना था। मित्रों, आज ही हम देश के महान समाज सुधारक और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा और समान अवसरों के लिए कार्य किया। साथ ही दोनों महान विभूतियों का जीवन हमें यही सिखाता है कि जब समाज का हर व्यक्ति, हर बेटा, हर बेटी आगे बढ़ेगी, तभी देश वास्तव में आगे बढ़ेगा। मित्रों, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज की चौपाल में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, जो बेटियों के उज्जवल भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है। साथियों, गांव की चौपाल पर जब भी हम लोग बैठते हैं ना, तो खेती किसानी की बातें होती हैं, मौसम की चर्चा होती है, आज भी होगी, लेकिन साथ ही होगी चर्चा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। मित्रों, समय बदल रहा है, आज गांव की बेटियां भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापिका, पुलिस अधिकारी, खिलाड़ी और वैज्ञानिक बन रही हैं। वे हर क्षेत्र में अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन कर रही हैं। साथियों, हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब बहुत से घरों में पैसों की कमी के कारण बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती थी, लेकिन इस समस्या पर अब सरकार भी ध्यान दे रही है। इसीलिए आज सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना से सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा

जिस परिवार में उन बेटियों ने जन्म लिया है उन परिवारों को आर्थिक सहयोग दे रही है, जिससे पैसों की कमी से वो अपनी बेटियों की पढ़ाई ना छोड़वा दे। देखो, जब सरकारी सहायता से कुछ बच्चियां भी, मान लो अगर कुछ बच्चियां भी स्कूल जाने लग जाएंगी ना, तो एक दूसरे की देखा देखी में ही सही और बच्चियां भी स्कूल जाने लग जाएंगी। वो बच्चियां भी स्कूल जाने लगेंगी जिनके माता पिता पैसों की कमी से नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सोच सही ना होने के कारण स्कूल नहीं भेजते हैं। मित्रों, ये योजना हमें एक सुंदर संदेश देती है कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब बेटी स्वस्थ होगी, पढ़ेगी, लिखेगी और आत्मनिर्भर बनेगी, तभी परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। आज गांव में भी लोग अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं। कई परिवार बेटियों को कंप्यूटर, खेल, संगीत और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बेटियां आज खेती किसानी में भी अपने माता पिता का हाथ बटा रही हैं। कहीं वे डेयरी चला रही हैं, कहीं वो मशरूम का उत्पादन कर रही हैं, तो कहीं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं। साथियों, हमारे गांव में एक बात कही जाती है, जिस घर में बेटी मुस्कुराती है ना, उस घर में खुशियां भी मुस्कुराती है। सच भी यही है कि बेटी पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, पूरे परिवार को प्रसन्न रखती है। मित्रों, हमें केवल बेटियों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सपने पूरे करने का अवसर भी देना है। आज सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और खुद के रोजगार से जुड़ी अनेक योजनाओं के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आवश्यकता केवल सही जानकारी और समय पर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने का है। यदि आपके गांव में भी किसी पात्र परिवार को इस योजना की जानकारी नहीं है, तो उन्हें जरूर बताइए। कई बार एक छोटी सी जानकारी से किसी परिवार की बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। साथियों, आज के समय में चाहे लड़का हो या लड़की, शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। इसलिए बेटियों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षा और संस्कार दोनों मिलकर ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने गांव की हर बेटी को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपने पूरा करने का हम अवसर देंगे। साथियों, याद रखिए, शिक्षित बेटी केवल अपना भविष्य नहीं बदलती है, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार देती है। इसलिए आप भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ अवश्य लें। साथियों, हमें पता है कि इतनी लंबी बात के बाद एक मधुर सा छोटा सा लोकगीत तो बनता ही है, तो आइए आनंद लेते हैं।

0: साथियों, जूनोटिक रोग वे बीमारियां होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकते हैं। पशुपालन करने वाले परिवारों के लिए इन रोगों के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भैया हमारे गांव में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग पशुपालन करते हैं और ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसीलिए समय पर पहचान कर लेना और जागरूकता रखना जूनोटिक रोग को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आइए डॉक्टर सुधीर कुमार रावत से ये जानते हैं कि जूनोटिक रोग के कारण, लक्षण और बचाव क्या क्या हो सकते हैं।
1: किसान भाइयों, राम राम। विश्व जूनोसिस दिवस आप लोग जानते हैं किसान भाइयों कि 6 जुलाई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो है 6 जुलाई 2007 को हुई थी। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर थे, इसी दिन उन्होंने रेबीज के खिलाफ पहले टीके का सफल प्रयोग किया था। विश्व जूनोसिस दिवस जो है उसका मकसद है लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इस दिन यह प्रोग्राम स्कूलों में, चिड़ियाघरों में, ग्रामीण इलाकों में, सरकारी गैर सरकारी स्कूल, चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हर जगह मनाया जाता है और जागरूकता फैलाई जाती है, जिससे हर इंसान इन बीमारियों से खुद को सुरक्षित रख सके। ये रोग जो होता है सीधे या परोक्ष रूप से जानवरों से इंसान में फैलता है। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवियों के द्वारा फैल सकता है। जैसे में रोग जो होते हैं वो रेबीज है, स्वाइन फ्लू है, टीबी, और ये रोग जो पालतू जानवर, मवेशी, पक्षियों, चमगादड़ जैसे कई तरह जानवरों से फैल सकता है। जूनोटिक बीमारियां मनुष्य और जानवरों के बीच में आपस में संपर्क के कारण फैलती हैं। जब संक्रामक एजेंट जानवरों से मनुष्यों में प्रवेश करता है तो जूनोटिक रोग बन जाता है। ये हमारे प्राकृतिक आवासों में मानव अतिक्रमण में वृद्धि, वन्य जीव व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक जूनोटिक रोगों के संचरण में योगदान करते हैं। जो रोगजनक एजेंट होते हैं संक्रमित जानवरों और उनके शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क के माध्यम से, दूषित भोजन के प्रयोग से, जल के माध्यम से, मच्छर, टिक या पिस्सू जैसे वेक्टर रोगजनक हैं, और गर्भवती जानवर से उनकी संतानों में अनुवांशिक रूप से एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है, जो गर्भावस्था या प्रसव के समय सीधे मनुष्यों से जानवरों में फैल जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियां, मनुष्यों में विभिन्न बीमारियां फैलाते हैं, और जैसे हम अपने पशुओं को मेले, बाजार और चिड़ियाघरों, जानवरों में प्रदर्शनियों में ले जाते हैं, ये जूनोटिक रोग उससे फैलता है। और प्रमुख रोग जो है विषाणु, जीवाणु और परजीवी के द्वारा फैलते हैं। इनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रमुख रोग जो जीवाणुओं के, विषाणु के द्वारा होते हैं, उसमें नंबर एक पे है रेबीज, जैसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये वायरस के द्वारा होता है। ये मुख्यतः कुत्ते के काटने से, चमगादड़ के काटने से मानव में फैलता है और ये सीधे हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इस रोग से जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें बुखार आना, सिर दर्द होना, कमजोरी, कटे हुए स्थान पे दर्द होता है, झुंझुनी, जलन, बाद में हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डरने लगता है इंसान, हवा से भी डरने लगता है, उसमें बेचैनी, भ्रम, लकवा और दौरे जैसे प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। इसके लिए बचाव के लिए आपको, जब कुत्ता आपको काटे या चमगादड़ काटे तो खरोच ने जो घाव बनाया उसको 15 मिनट तक साबुन से खूब बहते हुए पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। फिर कोई भी एंटीसेप्टिक दवाई उसमें आप लगा सकते हैं। फिर निकट में जो भी आपको अस्पताल मिले वहां जाके टीकाकरण करवा लेना चाहिए। अन्य रोग जैसे बर्ड फ्लू होता है या एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे फाउल प्लोग भी कहते हैं, ये टाइप ए प्रकार के विषाणु है, उससे फैलता है। इस विषाणु का संचरण पक्षियों द्वारा मनुष्य और मनुष्य से पक्षियों फैलता है। मनुष्यों में इस रोग के जो प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं उसमें खांसी आना, सर्दी, जुखाम, आंखों में लाली और निरंतर पानी बहता रहता आंखों से, सांस लेने में परेशानी होती है, शरीर में ऐठन होती है, बुखार होता है, ये बर्ड फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। इसी तरह रोग है स्वाइन फ्लू या सूअरों के द्वारा फैलता है। ये आरएनए विषाणु आर्थोमिक्सी वायरस होता है, उसके द्वारा यह फैलता है। यह मुख्यतः वायु के द्वारा एक दूसरे में संचरण होता है। सूअर के जो फेफड़े में उपस्थित जो कृमि होते हैं वो इस रोग के जो माध्यम है एक दूसरे में पहुंचाने का काम करते हैं। जो लोग सुअर का मांस खाते हैं या उसको भली प्रकार से पका के नहीं खाते हैं तो उसमें इस रोग के होने की संभावना अधिक बनी रहती है। मनुष्यों में इस रोग के जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें खांसी आना, सर्दी, जुखाम, आंखों में लाली, निरंतर से पानी बहता रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कमजोरी महसूस होती है, दस्त होता है, शरीर में ऐठन होती, इसके प्रमुख लक्षण है। अन्य रोग जो है वेस्ट नाइल विषाणु है जो फ्लेवी वायरस संक्रमित मुर्गियों से होता है और मच्छरों के काटने से एक दूसरे में, घोड़ों में, मनुष्यों में पहुंच जाता है। इसके लक्षण बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं। इसमें अचानक सिर दर्द, ठंड लगना, ज्वर, जी मतलाना, उल्टी, मांसपेशियों का दर्द प्रमुख है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा फैलता है और ये मानसिक पक्षाघात और कोमा में कंडीशन

0: हो जाती है। अगला रोग है जो एंथ्रेक्स, इसे तिल्ली बुखार के नाम से भी जाना जाता है, या बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा मनुष्यों में फैलता है और मनुष्यों से पशुओं में हो जाता है। मनुष्यों में रोग पशुपालकों और जो स्लॉटर हाउस में काम कर रहे हैं, मांस काट रहे हैं, वो है जो ऊन निकालने का काम कर रहे हैं, जो भेड़ पालक है उसमें अधिक फैलता है। इस रोग से पीड़ित मनुष्यों में त्वचा, फेफड़ों, आंतों में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। हाथ, सिर, गर्दन और विषैली फुंसियां इसमें शरीर में उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी इसमें गिल्टी रोग भी हो जाता है, फेफड़ों में इतनी समस्या हो जाती है कि आदमी को बचाना मुश्किल हो जाता है। पशुओं में इस रोग से बचाव हो मनुष्यों को एंटी एंथ्रेक्स सीरम और जीवाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और हर साल इसमें टीकाकरण करवा लेना चाहिए। अगला जो रोग है टीबी, यह बहुत प्रमुख रोग है, इसे तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है। यह मनुष्यों पशुओं में माइकोबैक्टीरियम बोविस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो क्षय रोग होता है मनुष्यों में दूध पीने से, उसके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे केक बनाया जाता है, पेस्ट्री बनाई जाती है, आइसक्रीम बनाई जाती है, इसके द्वारा फैलता है। यदि कोई बिना उबला हुआ या ठीक से पाश्चुरीकृत दूध नहीं पी रहा है, पाश्चुरीकृत दूध वो पी लेता है तो रोग आसानी से फैल जाता है। क्षय रोग से प्रभावित रोगी को सामान्यता जो लक्षण होते हैं वो कमजोरी महसूस होती है, थकान, सुस्ती, हल्का बुखार, पाचन तंत्र में गड़बड़ी आती है, शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, रात के समय पसीना आता है, इसके लक्षण प्रमुख लक्षण है। क्यूजर, ये कॉक्सिलिया बुनेटी नामक जीवाणु है, इसे मनुष्यों में प्रसारित होता है जो बिना किसी लक्षण के अथवा महीनों तक गंभीर फ्लू के लक्षणों के साथ भी प्रकट रहता है। यह रोग भेड़ पालने वाले, बकरी पालने वाले, गाय के मूत्र और जो प्लेसेंटल फ्लूइड होता है उसके माध्यम से श्वास के द्वारा मनुष्यों तक पहुंच के संक्रमित करता है। इस रोग में जो आसानी से अफेक्टेड होते हैं वो भेड़ पालक हैं, पशु चिकित्सक हैं, स्लॉटर हाउस में काम करने वाले, ऊन निकालने वाले, उनमें होता है। इसके लिए बचाव के लिए मनुष्यों को इसका टीका लगवा लेना चाहिए। क्रिप्टोस्पोरोडिस डिजीज जो है ये प्रोटोजावा के द्वारा फैलती है, जो संक्रमण की दशा में इसमें तीव्र दस्त पैदा होता है या एक कम माह के जो छोटे बछड़े होते हैं उसमें आसानी से अपनी पैड बना लेते हैं। क्रिप्टोस्पोरोडियम संक्रमित जल खाद्य पदार्थ के माध्यम से मनुष्यों तथा पशुओं में अपनी पैड बना लेता है। जो लोग संक्रमित पशुओं और उनके मल के संक्रमण में आते हैं उनको अच्छी तरह से अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वो पशुओं से दूर हो तो उन्हें साबुन से अच्छी तरह से हाथ वाथ धो लेना चाहिए। संक्रमित मनुष्यों में तीव्र दस्त हो जाता है, पेट में दर्द, उल्टी, जर, मांसपेशियों में खिंचाव, पूरे शरीर में पीड़ा आदि लक्षण पाए जाते हैं। टॉक्सोप्लास्मोसिस, यह भी एक प्रोटोजोवा से जनित रोग है जो मनुष्यों, पालतू बिल्ली जो लोग पालते हैं उनसे संक्रमित जो मल होता है उसके माध्यम से मनुष्यों में फैल जाता है। यह जो बिल्लियों में संक्रमण चिड़ियों, चूहा, जो कच्चा मांस खाते हैं उनके द्वारा ये फैल जाता है, और इसमें जो प्रभावित वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है या बच्चे होते हैं या 4 माह से कम गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उसमें संभावना अधिक बनी रहती है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों करना क्या है, जो मनुष्य हो या पशु हो उनके हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उनके मल मूत्र हैं कभी भी इकट्ठा मत होने दें। जो हमारे छुट्टा जानवर हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको हम नहीं जान रहे उसमें कौन सा रोग क्या है, उनको अपने पशुशाला में बिल्कुल भी आने मत दीजिए, और पशुओं के संपर्क में आने वाले कोई भी इंसान हो चाहे छोटा या बड़ा उसको अच्छी तरह से साबुन से हाथ वाथ अपने धो लेने चाहिए। सदैव हमेशा उबला हुआ पाश्चुरीकृत दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। मांस को लोग जो खा रहे हैं उनको खूब कसे पकाकर ही खाना चाहिए। किसान भाइयों को ध्यान रखना है, कच्चे अंडे का प्रयोग बिल्कुल न करें, और जो पशुओं का जो आहार है जो जमीन से टच हो रहा है या उसके बर्तन जो यूज हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लेना चाहिए, साबुन से अच्छी तरह बर्तनों को साफ कर लेना चाहिए। रोगी पशुओं को हमेशा स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। नए पशु जो हम खरीद रहे हैं उनको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का क्वारंटाइन बहुत ही आवश्यक है, और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं चाहे पशुपालक हों चाहे पशु चिकित्सा जुड़े डॉक्टर हों, उनके पास हमेशा निरोधी वस्तुएं जैसे दस्ताने, चश्मे, गैस मास्क हमेशा इनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो किसान जो ये उपाय अपनाएंगे उससे बीमारियों से बचा जा सकता। धन्यवाद
1: साथियों, अभी हमने डॉक्टर सुधीर कुमार रावत से ये जाना कि जूनोटिक रोग के कारण, लक्षण और बचाव क्या क्या हो सकते हैं। आशा है कि आप इस जानकारी से अपना और अपने परिवार का पूरा बचाव कर सकेंगे। साथियों, अब समय हो चला है नई किस्म जानने का। इस खरीफ मौसम में किसान भाई बाजरा की उन्नत किस्म HHB67 इम्प्रूव्ड की खेती पर विचार कर सकते हैं। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। समय पर बुवाई, संतुलित खाद और उचित देखभाल के साथ ये किस्म अच्छा उत्पादन दे सकती है। प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें और बुवाई से पहले कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह अवश्य ले लें। साथ ही इसी के साथ जान लेते हैं।

विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथियों, इसी के साथ अब जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, क्योंकि भैया हम तो किसान हैं और अपनी फसल का मंडी में क्या भाव चल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जिसमें टमाटर का भाव है 2000 से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल, लहसुन 4800 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल और आलू का भाव है 500 से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। तो मित्रों, हमारी चौपाल की बातें तो चलती रहेंगी, आइए अब सुरों की चौपाल सजाते हैं। सुनते हैं संजय उपाध्याय के मधुर आवाज में ये लोकगीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम्य लोक। अब अपने साथी लोकेंद्र पाठक को अनुमति दीजिए। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल।

हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है मौसम का मजा ले रहे होंगे। साथियों, भीषण गर्मी के बाद हुई इस ठंडी ठंडी बारिश ने हम सबको गर्मी से राहत दिलाई है, और बारिश का मौसम होता ही इतना सुहावना है कि बस मन करता है बारिश की बूंदों को आराम से देखते जाएं और उसका आनंद लेते जाएं। साथियों, यूं तो बारिश का मौसम हम सबको पसंद है, लेकिन बारिश के बाद एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने आ जाती है, और वो समस्या है जगह जगह बारिश के पानी का जल भराव। जी हाँ साथियों, जहाँ देखो वहाँ बारिश का पानी भर जाता है। इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ नाले होने के बाद भी जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, शहरों में जगह जगह या गांव में भी बारिश का पानी भरा हुआ मिल ही जाता है। और अगर देखा जाए ना, तो इसका सबसे बड़ा कारण पानी की निकासी के लिए बनाई गई नालियों की कमी नहीं है, बल्कि उन नालियों में फंसा हुआ वो कचरा है जो पानी को आगे जाने ही नहीं देता। और इस कचरे में सबसे बड़ी मात्रा है प्लास्टिक की। जी हाँ साथियों, वही प्लास्टिक जिसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बड़े आराम से बिना सोचे समझे इस्तेमाल करके यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं। कभी वो प्लास्टिक उड़कर नालियों में जाती है, तो कभी आवारा भटकते हुए जानवरों में जो कचरों में खाना ढूंढ रहे होते हैं उनके पेट में जाती है और उनकी मौत का कारण बनती है। सोचिए साथियों, हम चंद रुपयों की पॉलिथीन इस्तेमाल करते हैं और पूरा शहर पानी में डूब जाता है। हम चिप्स का पैकेट खाकर सड़क पर फेंक देते हैं और वही पैकेट नाली बंद करके घंटों का जाम लगवा देता है। हम दूध की थैली जो इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, और वही थैली गाय के पेट में जाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है। किसका नुकसान हुआ? हमारा ही ना। साथियों, सरकार नालियां बनवाएगी, सफाई कर्मी रोज सफाई करेंगे, लेकिन अगर हम घर से ही कचरा नालियों में फेंकना बंद नहीं करेंगे तो ये जल भराव कभी बंद नहीं होगा। और मात्र गंदे पानी का जल भराव ही प्लास्टिक के इस्तेमाल का एकमात्र दुष्प्रभाव नहीं है। प्लास्टिक से हमें और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झेलनी पड़ती है, जैसे धरती माँ की तबाही। साथियों, जो रोटी का टुकड़ा हम फेंकते हैं ना, वो दो दिन में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक की थैली हम फेंकते हैं वो 400 से 500 साल तक

प्लास्टिक न गलती है न सड़ती है, बल्कि जमीन में फंसकर जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देती है, फसलें कम हो जाती हैं। यानी जो प्लास्टिक आज हम फेंक रहे हैं उसकी सजा हमारी 10वीं पीढ़ी भुगतेगी। साथियों, प्लास्टिक के कारण जानवरों की मौतें होती हैं। गाय, बैल, कुत्ते, बंदर, ये सारे आवारा पशु जब कचरे में अपना खाना ढूंढते हैं तो कई बार उस खाने के साथ वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं, और वो प्लास्टिक उनके पेट में जाकर रुक जाती है क्योंकि उस प्लास्टिक को वो पचा नहीं पाते, जिसके कारण वो खाना नहीं पचा पाते हैं और उनका पेट फूल जाता है और उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। साथियों, जिस गाय को हम माँ मानते हैं, हम उसी गाय को जहर खिला रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर भी पड़ता है। प्लास्टिक जलाने से जो काला धुआं निकलता है ना, उसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण हमें सांस की बीमारी, अस्थमा, एलर्जी, ये सब हो सकता है। और जो प्लास्टिक की बोतल में हम पानी को भरकर धूप में रख देते हैं, उस पानी में माइक्रो प्लास्टिक घुल जाती है जो सीधे हमारे खून में जाती है, और डॉक्टर्स के अनुसार इससे हमें कैंसर होने का भी खतरा है। प्लास्टिक के कारण हमारी नदियों और समुद्र की मौत हो रही है। नदियों में जितना भी कचरा हम देखते हैं ना, उसमें आधे से ज्यादा कचरा प्लास्टिक ही है। यहाँ तक कि समुद्रों में भी मछलियाँ प्लास्टिक खा लेती हैं, कछुए पॉलिथिन को जेली समझकर खा लेते हैं। समुद्र का पानी जहरीला हो रहा है और पानी में रहने वाले जीव जंतु भी इससे अछूते नहीं हैं। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। सोचिए, जब पर्यटक आगरा में ताजमहल देखने आते हैं और ताजमहल के साथ साथ वो देखते हैं सड़क के चारों तरफ उड़ती हुई प्लास्टिक, तो वो अपने देश में जाकर हमारे देश की क्या छवि बनाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में होने वाला जो पर्यटक है, जो रोजगार है, वो भी कम हो रहा है। तो साथियों, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार तो प्लास्टिक के खिलाफ कानून बनाएगी ही, लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाने से ही प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक हम आम जन ये निर्णय नहीं ले लेते कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कितने भी कानून बन जाएं, वो सब किसी काम के नहीं है। तो साथियों, हमें प्रण लेना चाहिए कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे। जैसे, जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ कपड़े के थैले ले जाना ना भूलें। भाई, पहले के ज़माने में भी तो यही होता था ना, जब भी घर के बड़े बाजार जाते थे तो वो अपने घरों से अपने झोले थैले साथ ले जाते थे ना, बस उसी पुरानी आदत को दोबारा से अपनाना है। साथियों, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने की जगह स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। देखिए, स्टील थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये आपको प्लास्टिक से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है। अगर घरों में पानी रखना है तो हम स्टील की, कांच की या फिर मिट्टी से बने बर्तनों में पानी रख सकते हैं, वो हमारे लिए सुरक्षित है। साथियों, प्लास्टिक में रखा हुआ पानी हमारे लिए जहर हो जाता है। अपने घर में आप जब कचरा डालते हैं ना, उस कचरे को अलग अलग करके डालिए। देखिए, अगर कुछ ऐसा सामान आप बाजार से खरीद कर ला रहे हैं जो किसी प्लास्टिक के पैकेट में आता है, तो याद रखिए, अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके फेंके, क्योंकि हमारे रसोई से जितना भी कचरा निकलता है ना, गीला कचरा, वो कचरा आराम से मिट्टी में घुल मिल जाता है, क्योंकि वो जैविक कचरा होता है। लेकिन जो सूखा कचरा है, जैसे प्लास्टिक या पेपर या गत्ते, ये कचरे रिसाइकल हो सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग करके डालना चाहिए ताकि ये हमारे पर्यावरण को खराब ना करे। बस साथियों, इन्हीं कुछ छोटी मोटी आदतों से हम रोजमर्रा में जो इतनी तादाद में प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम इसका पूरा दोषारोपण अपनी सरकार पर नहीं कर सकते, और अपने पर्यावरण को मरने से बचाने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। तो आज से प्रण लीजिए कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को आप कहेंगे ना, और अपने घर से ही लेके जाएंगे अपने थैले। और साथियों, जब हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, हमारे आसपास गंदगी की जगह

साफ सफाई होगी तभी तो सही मायने में हम इस बारिश की रिमझिम बरसती बूंदों का लुफ्त उठा पाएंगे, बिल्कुल कुछ इस गीत के बोलों की तरह।

साथियों, मानसून का मौसम होता तो बड़ा सुहावना है। ठंडी ठंडी बारिश की बूंदों के साथ चलती मनमोहक हवा हम सबका मन मोह लेती है। इन बरसती हुई बूंदों को देखकर इसमें भीगने से हम सब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन साथियों, बारिश अपने साथ जितना आनंद, जितनी मौज मस्ती लाती है ना, उतनी ही परेशानियां भी लाती है। जैसे बारिश के मौसम में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, कीटाणु बहुत तेजी से पनपते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम का जो तापमान है वो कीटाणुओं के पनपने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए संक्रमण से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू, बुखार या फिर वायरल होना, इस तरह की बीमारियां बारिशों के मौसम में बहुत ही तेजी से फैलने लगती हैं। और एक बार अगर हम बीमार पड़ जाएं, तो भैया वही डॉक्टर के चक्कर, ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी दवाइयां और ढेर सारे पैसों का खर्चा। साथियों, ये महंगी महंगी दवाइयां ना हमारे जेबों पर तो भारी पड़ती ही हैं, लेकिन ये हमारी सेहत पर भी भारी पड़ती हैं। जी हाँ, कई बार तो इन केमिकल से भरी दवाइयों को खाने के बाद ही हमारे शरीर को और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या करें? क्या हम बिना दवाई खाए भी ठीक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। और एक ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जिसमें इंसानी शरीर को ठीक करने के लिए किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिना दवाई के ही शरीर से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जाता है और उसे दूर किया जाता है। और इस चिकित्सा पद्धति को कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है साथियों? देखिए, यूं तो ये हमारे देश के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये तो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है जो वो हजारों सालों से अपनाते आए हैं। लेकिन समय के गुजरने के बाद हम वो सारी तकनीक, सारी पद्धतियाँ भूल चुके हैं। देखिए, इस पद्धति में ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर खुद ही डॉक्टर है, बस उसे मौका देना है। प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी एक औषधि रहित उपचार पद्धति है जो प्रकृति के पांच तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में मौजूद विजातीय तत्वों यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर की आत्म उपचार, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग, जिसमें शरीर खुद ही खुद को ठीक करता है, ऐसी क्षमता को बढ़ाना है। इसकी कई सारी पद्धतियां हैं जिससे वो बीमारी का पता लगाते हैं और शरीर को अपने आप उसे ठीक करने देते हैं। जैसे इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपचार पद्धतियों में आता है, पहला मिड थेरेपी। मिड थेरेपी मतलब मिट्टी के लेप द्वारा शरीर से जो विषैले तत्व हैं उनको निकालना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। दूसरा है जल चिकित्सा, जिसे कहा जाता है हाइड्रोथेरेपी। देखिए, विभिन्न तापमानों यानी गर्म और ठंडे पानी से स्नान, स्टीम और पेट की पट्टियों यानी एनीमा का उपयोग करके शरीर का उपचार करना। तीसरा है उपवास यानी फास्टिंग। देखिए, उपवास को तो हमारे वैसे भी ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा बताया है, लेकिन इसमें भी उपवास के कई सारे अलग अलग तरीके बताए गए हैं। पाचन तंत्र को आराम देकर शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने का अवसर देना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम नेचुरोपैथी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें श्वसन क्रियाओं और शारीरिक आसनों द्वारा ऊर्जा को संतुलन बनाना, साथ ही साथ आहार। देखिए, अगर हमारे शरीर में हम प्राणायाम भी कर रहे हैं और

0: बाकी चीजें भी कर रहे हैं लेकिन हमारा आहार ठीक नहीं है तो हमें बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए आहार और पोषण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। मौसमी फल, अंकुरित अनाज और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सात्विक भोजन के ऊपर जोर दिया जाता है और किस शरीर को कौन सा भोजन है जो नहीं पचता है या उसके लिए वो सही नहीं है वो इसमें बताया जाता है। साथियों, नेचुरोपैथी में आपके शरीर को ही बीमारी से लड़ने के योग्य बना दिया जाता है बिना किसी बाहरी दवाई या केमिकल के सहयोग के। सोचिए साथियों, ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें आपको ना तो कोई इंजेक्शन लेना है, ना मुट्ठी भर दवाइयां खानी है, ना जाकर अस्पतालों के चक्कर काटने हैं, ऐसे जो आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, बस कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने आप ही अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और अपने शरीर को समय देते हैं कि वो खुद को ठीक कर सके, है ना, ये बहुत ही अच्छी बात। तो साथियों, जब अगली बार किसी बीमारी के चलते आप दवाइयां खा के परेशान हो जाएं, तो एक बार नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी अपनाकर देखिए, क्या पता आपका शरीर दवाइयों की नहीं बल्कि किसी और चीज का इंतजार कर रहा हो। क्योंकि साथियों, प्रकृति में बहुत ताकत है और ये प्राकृतिक चीजें जिससे हमारा शरीर बना है, यही चीजें हमारे शरीर को ठीक करने में भी मदद करती है। साथियों, अभी तो करनी है आपसे बहुत सारी बातें, लेकिन पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, आज है 6 जुलाई और आज के दिन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसने भारत और चीन के रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो घटना थी 44 सालों के बाद नाथुला दर्रे का दोबारा से खोला जाना। जी हाँ साथियों, नाथुला दर्रा सिक्किम की सीमा पर 4,310 मीटर की ऊंचाई पर बसा वो ऐतिहासिक रास्ता जो सदियों से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और संस्कृति का पुल बना हुआ है। लेकिन हुआ क्यों था, ये दर्रा क्यों बंद किया गया था? बात है सन 1962 की। 1962 के युद्ध के बाद और 1967 में हुए संघर्ष के चलते नाथुला दर्रे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दोनों देशों के बीच सभी तरह के व्यापार, बातचीत, लेन देन बंद हो गए थे। और फिर पूरे 44 सालों के बाद, 44 साल तक बंद रहने के बाद दोबारा से इसे 6 जुलाई 2006 को खोला गया। भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर इस दर्रे को फिर से व्यापार और लेन देन के लिए खोल दिया। इस दिन नाथुला पर दोनों देशों के झंडे लहरा रहे थे, बैंड बज रहे थे और मिठाइयां बट रही थी। 44 साल बाद पहली बार ट्रकें एक दूसरे देशों की सीमाओं को पार कर रही थी। लेकिन इसका महत्व क्या है साथियों? देखिए, नाथुला दर्रे को खोले जाने से हमें व्यापार का एक नया रास्ता मिला। सिक्किम के किसानों, व्यापारियों को चीन के तिब्बत क्षेत्र से सीधा व्यापार करने का मौका मिला, जिसमें ऊन, मसाले, जड़ी बूटियां सबका लेन देन शुरू हुआ और इससे हमारे व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ। साथ ही साथ चाइना में बनने वाले सामान भी हमारे देश में आने शुरू हो गए। तिब्बत से हमारे रिश्ते अच्छे हुए, रिश्तों में गर्माहट आई, गोली और तनाव की जगह बातचीत और व्यापार ने ली और ये प्रतीक बना कि दुश्मनी नहीं, दोस्ती से ही तरक्की है। क्योंकि दुश्मनी या फिर लड़ाई, जंग दोनों ही देशों के लिए हानिकारक है। जब दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अब वो जंग नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरक्की में सहयोग करेंगे, तो नाथुला दर्रे ने इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ ये जगह पर्यटन के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। आज भी नाथुला सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है। देश विदेश से लोग यहाँ आकर भारत चीन सीमा को देखते हैं।

और गर्व से कहते हैं, ये है मेरा भारत। साथियों, नाथुल्ला हमें ये सिखाता है कि सीमाएं दीवारें नहीं पुल बन सकती हैं, बस नियत साफ होनी चाहिए। आज 6 जुलाई के दिन हम उन सभी जवानों और नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने इस दर्रे को फिर से खोलने में मेहनत की। ऊपर बर्फ की सफेदी, नीचे दोनों देशों की दोस्ती की उम्मीद, यही है नाथुल्ला। और साथियों, इसी उम्मीद के साथ अब वक्त है संगीत की दुनिया में चलने का और सुनने का ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे मजदूर मंडल, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टोरी की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्वभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति

0: POJK and cross into India. And in FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभा माधुनी। श्रोताओं, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती है, इसी उपलक्ष में सुनवाते हैं आपको ये वार्ता।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतवर्ष की जनता उन्हें एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में स्मरण करती है। भारत का ये महान सपूत आज भी लाखों देशवासियों के मन में एक पथ प्रदर्शक और प्रेरणा पुंज के रूप में विद्यमान है। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। आपके पिता श्री आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, न्यायशास्त्री और शिक्षाविद थे। आप अपने पिता की प्रतिमूर्ति थे और उनके ही योजनाबद्ध प्रयास की एक सफल और पूर्ण निर्मिति। कुशाग्र बुद्धि और जन्मजात प्रतिभा संपन्न डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक और 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित की और 1926 में वे इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अल्पायु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की और शीघ्र ही उनकी ख्याति एक शिक्षाविद और लोकप्रिय प्रशासक के रूप में फैलती गई। मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्ति दी गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। कुलपति के रूप में बंगला तथा अन्य देशी भाषाओं की आपने प्रतिष्ठापना कराई। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से विभूषित किया। देश की राजनीतिक दुरावस्था उन्हें राजनीति में पदार्पण करने से नहीं रोक सकी। एक राजनीतिक दल की मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के कारण जब बंगाल की सत्ता मुस्लिम लीग की गोद में डाल दी गई और 1938 में 8 प्रदेशों में अपनी सत्ता छोड़ने की आत्मघाती और देश विरोधी नीति अपनाई गई, तब डॉक्टर मुखर्जी ने स्वेच्छा से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का संदेश प्रसारित करने के लिए अपनी जीवन यात्रा का श्री गणेश किया। सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी होने के कारण उन्होंने कुछ आदर्शों और सिद्धांतों के साथ सक्रिय राजनीति प्रारंभ की। जिस भावना और उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, उसकी झलक उनकी 7 जनवरी 1939 की डायरी में लिखे उद्गारों में मिलती है। हे प्रभु, मुझे निष्ठा, साहस, शक्ति और मन की शांति दीजिए। मुझे दूसरों का भला करने की हिम्मत और दृढ़ संकल्प दीजिए। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुख में भी और दुख में भी आपको याद करता रहूं और आपके स्नेह में पलता रहूं। हे प्रभु, मुझसे हुई गलतियों के लिए क्षमा करो और मुझे सत प्रेरणा देते रहिए। उन्होंने अपना जीवन अक्षरशः इन उद्गारों के अनुरूप व्यतीत किया। डॉक्टर मुखर्जी भारतीय राजनीति के उस कालखंड में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक विकल्प का दीपक लेकर देश के समक्ष आ खड़े हुए। जब सत्ता पक्ष मात्र सत्ता संचालन की मशीनरी बन गया था और उसने राष्ट्र के सपनों की पूर्ति के उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त कर लिया था, स्वस्थ विचार की राजनीति के अंधकार के उस दौर में डॉक्टर मुखर्जी के दीपक के प्रकाश से ही जन जन को आशा की किरणों का धीरज मिल सका था। डॉक्टर मुखर्जी ने भांप लिया था कि यदि मुस्लिम लीग को निरंकुश रहने दिया गया तो उससे बंगाल और हिंदू हितों को क्षति पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग सरकार का तख्ता पलटने का निश्चय किया और बहुत से गैर कांग्रेसी हिंदुओं पशुओं की मदद से कृषक प्रजा

0: पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया। इस सरकार में वह वित्त मंत्री बने। इसी समय वे वीर सावरकर के प्रखर राष्ट्रवाद से आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी और सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को नाकाम किया। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जेलों में ठूस दिया और देश नेतृत्व विहीन नजर आने लगा, तब डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल के हित में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारत को नई दिशा दी। धर्म के आधार पर विभाजन के वे कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ भारत के विभाजन की पूर्व स्थितियों का डटकर सामना किया। उस समय कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की हर मांग को पूरा करके उससे छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु डॉक्टर मुखर्जी चट्टान की तरह अडिग रहकर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का विरोध करते रहे। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यंत्र को एक दल विशेष के नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वायदों को ताक पर रखकर विभाजन स्वीकार कर लिया। तभी डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब भारत के लिए बचा लिया। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे खंडित भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए, किंतु उनके अन्य नेताओं से मतभेद बने रहे और इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फलतः उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन की चुनौती को स्वीकार किया और शीघ्र ही अन्य राष्ट्रवादी दलों और तत्वों को मिलाकर एक नई पार्टी बनाई, जो कि विरोधी पक्ष में सबसे बड़ा दल था। अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही जनसंघ की स्थापना की। संसद में डॉक्टर मुखर्जी ने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को प्रथम लक्ष्य रखा। वे जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था और वहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। डॉक्टर मुखर्जी ने जोरदार नारा बुलंद किया, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में धारा 370 समाप्त करने की जोरदार वकालत की। 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्म बलिदान कर दूंगा। अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। भयंकर अमानुषीय यातनाएं सहते हुए 23 जून 1953 को भारत माता के महान सपूत ने माँ माँ का उच्चारण करते हुए महाप्रयाण किया। वे भारत के लिए शहीद हो गए और भारत ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जो इसे नई दिशा दे सकता था।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के उपलक्ष्य में वार्ता, जिसका विषय था श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। वार्ताकार थी डॉ प्रभा माधुनी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में प्रसारण।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
3: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से,
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल

0: से पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि बैठक में चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव का कार्यभार कृष्ण मोहन को सौंपा गया है।
5: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे।
4: श्री गिरी ने बताया कि न्यास की अगली बैठक 22 तारीख को होगी और उम्मीद है कि तब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने पर फैसला होगा। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही और सरकारी वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
6: आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन गवर्नमेंट के अंडर में सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
4: वहीं श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्री

0: परिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर श्रमिकों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।
1: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। खेल मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि बैठक में ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के काली घाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है।
2: महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा और विरासत का सम्मान कैसे करना है ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता, प्रयागराज ने तो करके दिखाया है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है, रेल ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहिब आदि कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से पीलीभीत के विकास को गति मिलेगी।
3: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस दौरान श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने जबकि पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को उषा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, हमारी भारत भूमि में बहुत से महान शिक्षाविद एवं महान समाज सेवी हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख शिक्षाविद एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता समाज सेवी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनकी आज जयंती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आपका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। आपके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और न्यायविद थे, जिन्हें बंगाल का बाघ भी कहा जाता था। आपकी माता का नाम जोगमाया देवी था। बचपन से ही श्यामा प्रसाद अत्यंत मेधावी, अनुशासित और परिश्रमी थे। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की और बाद में कोलकाता यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा पूरी की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य तथा विधि की पढ़ाई में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। केवल 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार हुए और भारतीय संस्कृति तथा मातृभाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बंगाल विधान परिषद से की। वे राष्ट्रहित के मुद्दों पर स्पष्ट और निर्भीक विचार रखते थे। स्वतंत्रता से पहले वे बंगाल सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। साथियों, आगे की बात हम करेंगे इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये पार्टी आगे चलकर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी और बाद में इसी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। डॉक्टर मुखर्जी का विश्वास था कि भारत एक राष्ट्र है और सभी राज्यों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। ये नारा जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान, अलग झंडे और विशेष व्यवस्था के विरोध में दिया गया था। वे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का अभिन्न अंग बने और पूरे देश में एक समान संवैधानिक व्यवस्था लागू हो। 1953 में वे बिना परमिट के जम्मू कश्मीर गए क्योंकि वे परमिट व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रखा गया। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान ही उनका निधन हो गया। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन देशभक्ति, शिक्षा, ईमानदारी और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारत की राजनीति और शिक्षा जगत पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा। आज भी अनेक लोग उन्हें राष्ट्रीय एकता और दृढ़ नेतृत्व के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। आपकी जयंती हर वर्ष 6 जुलाई को मनाई जाती है। इस अवसर पर देश भर में उनके जीवन और योगदान को याद किया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श हमें राष्ट्र प्रेम, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, साहस और देश के प्रति समर्पण हो तो वह समाज और राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान दे सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के उन महान नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने शिक्षा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष, सेवा और देशभक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण है। साथियों, आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध राजनेता बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। आपका जन्म 5 अप्रैल 1908 को खंडवा में हुआ था। आपने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया और समानता तथा न्याय के लिए जीवन भर कार्य किया। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और आजादी के बाद कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आप उप प्रधानमंत्री भी रहे। बाबू जगजीवन राम ने किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आपका जीवन ईमानदारी, परिश्रम और देश सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। आपका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न करने की उषा सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम की पहली गजल है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम है अर्थ, शब्द रचना है कैफे आजमी की और संगीत से सजाया है।

कार्यक्रम की अगली गजल है भूपिंदर की आवाज में। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता। शब्द रचना है निदा फाजली की, संगीत दिया है खयाम ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से गजलों का कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम की अगली गजल है गुलाम अली की आवाज में, फिल्म का नाम है निकाह। शब्द रचना है हसरत मोहनी की, संगीत दिया है गुलाम अली ने।

कार्यक्रम की अगली गजल है आशा भोसले और भूपिंदर की आवाज में, फिल्म का नाम है एतबार। शब्द रचना है हसन कमाल की, संगीत दिया है वप्पी लहरी ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम की अंतिम गजल जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है तुम बिन। शब्द रचना है फैज अनवर की, संगीत दिया है निखिल विनय ने।

इसी गजल के साथ शामे गजल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में। फिल्म का नाम है चश्मे पर दूर। शब्द रचना है इंदु जैन की, संगीत दिया है राजकमल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है वप्पी लहरी की आवाज में. फिल्म का नाम है डिस्को डांसर. शब्द रचना है अनजान की, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने.

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया।

0: जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों

0: के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चंपतराय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्दबुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस एफआईआर की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाब्तगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरीरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरीरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है और ये भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वुजरा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने के गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और सीईओ नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉ गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर हैं 01132481 2371717 2371716। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी न आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے کرناٹک کے شہر بنگلورو

0: पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कदा नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है।
2: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हकानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्ला अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं, जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जसदे खाकी को इमाम के रोजे से मुशावहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोख के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। यह सोख सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा, जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथी मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सियाटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथी मेजबान मैक्सिको को 2-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता

0: चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2331-7116 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट अ रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूं, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
1: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
1: रिटर्न कॉल नहीं
0: होती, सबसे बड़ी बात।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको, एक मिनट दीजिए, कोई सामान गिर गया है, कुछ थाना है।

0: कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं। वो जो ऐप आती है एक, जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए, आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं
1: जी।
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है। वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है। कॉल देखें पहले गौर से, जब कॉल आती है तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए। अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करो, इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफी मटेरियल है, उस पर काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में

0: कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से, अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसको लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
3: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
4: सभी को नमस्कार
1: जी,
4: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए? दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
0: पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
0: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: ठीक है, शायद उन्होंने उनका
0: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ,
0: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट किसी पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, ना कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स

0: इसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है। इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड न करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी।
0: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है। अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या एनपीटेल नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें आईआईटी कानपुर या आईआईटी के बड़े एमटेक मास्टर्स पीएचडी के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के आईआईएम्स के मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने ही प्रयास किए हैं। ओडिशा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
5: धन्यवाद। मैं धर्मवीर ब्रह्मेगा दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
5: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये

0: है वो मेरा मेन मकसद है सवाल का कि जैसे आज के समय में दसवीं क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
1: धन्यवाद। आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फोन से किया उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फोन ही बहुत अच्छे हो गए हैं जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पज के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, केयरफुल रहना पड़ता है।
2: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
1: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
2: जी।
1: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
2: जी।
1: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
3: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन, दूसरी साथी वहां काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं।

0: तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? अच्छा, जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
0: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए, या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए, या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
3: यह बहुत अहम सवाल है
1: जी।
3: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। जहां तक आपको ये, जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर तीन पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक हैं विशेषता शर्मा, प्रस्तुत करता है अनिंद्र सिंह।

0: विदेशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए विशेषता शर्मा का प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। और ये देखिए, हम आपसे कुछ बातें कर पाए उससे पहले ही हमारे आज के पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं कार्यक्रम का पहला फोन कहाँ से आया है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा।
0: सागर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर।
0: अच्छा, यहाँ आगरा में भी बारिश हो रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बसई नवाब दौलतपुर।
0: कब से हो रही है वहाँ बारिश? आज ही शुरू हुई है या एक दो दिन से हो रही है?
1: आज ही शुरू हुई है।
0: सब तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया होगा।
1: हाँ,
0: और आज इस कार्यक्रम
1: और
0: में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सावन के झूलों ने मुझे को झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
0: तो इस बारिश में आप अपनी पसंद का गीत सुनिए। आपके साथ साथ इस गीत को और कौन सुनेगा?
1: मेरे साथ में मेरी पत्नी भी सुनती है।
0: उनका नाम बता दीजिए।
1: रचना देवी।
0: ठीक है सागर जी, आप अपनी पत्नी के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, नमस्कार मैडम
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ
0: दिवाकर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी। मैं आगरा में कमला नगर से बोल रहा हूँ।
0: आकाशवाणी आगरा के
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी। मैं आकाशवाणी आगरा के सभी कार्यक्रम लगभग सुनने की कोशिश करता हूँ, और सुबह तो मेरी आंख खुलती है तो रेडियो से ही खुलती है, आकाशवाणी आगरा सुनकर ही खुलती है आंखें।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से कार्यक्रम हमारे आपको बेहद पसंद आते हैं?
1: सबसे पहले तो मुझे जो आपके यहाँ से आकाशवाणी दिल्ली से जो रिले होता है
0: जी
1: न्यूज, उसे सुनना बहुत पसंद है। मैं
0: जी
1: हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज दोनों सुनता हूँ। जब मेरा छात्र जीवन था तब
0: जी
1: भी मैं सुनता था, तो मुझे तभी से आदत है। आज भी मुझे आकाशवाणी की न्यूज सुनना पसंद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी न्यूज को केवल न्यूज के फॉर्म में ही दिया जाता है, लाग लपेट नहीं की जाती, कोई अननेचुरल कोई नहीं होता, और बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन, और उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है न्यूज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी प्रतिक्रिया सुनकर। तो
1: जी।
0: आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं सुनना चाहूंगा सैयारा फिल्म में, सैयारा
0: ठीक है, हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे दिवाकर की पसंद पर सैयारा फिल्म का ये गीत। आइए देखते हैं अगली फरमाइश हमें कहाँ से आई है। हेलो
1: हेलो आकाशवाणी,
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका परिचय?
1: मैं गंगानगर से कुहावा से बनवारी लाल कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: बनवारी लाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: क्या चल रहा है?
1: इस समय मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ।
0: अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
1: जी
0: बारिश का मौसम आ चुका है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, ऐसे में रुकावटें तो आती होंगी।
1: हाँ, थोड़ी बहुत तो परेशानी का सामना करना ही पड़ता है।
0: बनवारी लाल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं इस समय नोएडा में हूँ।
0: जी, तो वहाँ बारिश हो रही है?
1: नहीं, यहाँ पर बारिश नहीं है, यहाँ पर बहुत तेजी से गर्मी है।
0: मैं आगरा में तो बारिश हो चुकी है और हो सकता है थोड़े दिन में वहाँ भी बारिश हो जाए।
1: जी,
0: आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मर्द का सुना दीजिए, माँ शेरों वाली।
0: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपनी पसंद पर ये गीत सुनिए। आपके साथ साथ इस गीत को और कौन सुनेगा?
1: हमारी मैडम है मंजुलता कुशवाहा, बेटे हैं राम और श्याम और रवि और आर्यन, रामानंद कुशवाहा और रंजीत कुशवाहा।
0: ठीक है बनवारी लाल जी, आप सबके साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे बनवारी लाल कुशवाहा की पसंद पर मर्द फिल्म का ये गीत। आइए देखते हैं अगली फरमाइश हमें कहाँ से आई है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: मैं दीप्ति बोल बात कर रही हूँ।
0: दीप्ति, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रही हैं दीप्ति जी?
1: मैं आगरा से ही बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है।
0: अरे वाह, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है आपने?
1: मैंने हिंदी से किया था।
0: हिंदी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है
1: जी
0: और
1: मैम।
0: हमारी राजभाषा भी है,
1: यस मैम।
0: तो आगे क्या करने का विचार है आपका?
1: मैम आगे मैं सब मीडिया लाइन में जानना चाहती हूँ।
0: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। दीप्ति जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: मैम मेरा वो सॉन्ग है फेवरेट, मर्डर टू का, काले दिल।
0: ठीक है दीप्ति जी, आपकी पसंद पर हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। आपके साथ साथ और कौन सुनेगा इस गीत को?
1: मैम मेरी फैमिली सुनेगी पूरी।
0: ठीक है दीप्ति जी, अपनी पूरी फैमिली के साथ सुनिए मर्डर 2 फिल्म का ये गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम।

0: अभी आप सुन रहे थे देवती की पसंद पर मर्डर टू फिल्म का गीत। आइए देखते हैं अगला कॉल हमें कहाँ से आया है।
1: हेलो जी, नमस्कार
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका परिचय?
1: जी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ, आगरा से।
0: आदित्य जी, आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी बिल्कुल,
0: कैसे लगते हैं?
1: मुझे यहाँ के कार्यक्रम में बहुत रुचि है।
0: आदित्य जी, और क्या करते हैं आप?
1: जी, मेरा हैंडीक्राफ्ट का वर्क है, आगरा की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है,
0: जी
1: जैसे कि मार्बल का है, मार्बल इनले है, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आदित्य जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो MS धोनी मूवी का है, और वो है जब तक।
0: ठीक है, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस किस के साथ सुनेंगे आप इस गीत को?
1: मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ठीक है आदित्य जी, सबके साथ सुनिए अपनी पसंद पर।

अभी आप सुन रहे थे आदित्य की पसंद पर MS धोनी फिल्म का ये गीत। साथियों, घड़ी की सुइयां अब हमसे कह रही हैं कि आपसे इजाजत लेने का समय आ चुका है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक थी विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे अनेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं पंडित जसराज। आप प्रस्तुत करेंगे राग धूलिया मलार में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज का धूलिया मल्हार राग में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य

0: तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए तीन सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister